सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है,

शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026, सुबह के 5:58 39 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भक्ति संगीत यानी भगवान के प्रेम में डूबकर गाया बजाया जाने वाला संगीत, ये सिर्फ एक सुरताल नहीं है श्रोताओं, बल्कि दिल की एक आवाज है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब भी हम भक्ति संगीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो ये हमें मन को शांति देता है, हमें ईश्वर से जुड़ने का तरीका बताता है और हमारे अंदर संस्कार की भावना पैदा करता है। साथ ही सकारात्मक विचार हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और सुबह सुबह के वक्त अगर हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत भक्ति संगीत से करते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भजन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जब हम भक्ति संगीत की ओर चलते हैं तो हमारे दिमाग में जो तनाव होता है वो दूर होता है, साथ ही जो नेगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार हैं, वो भी दूर होते हैं। मीराबाई ने कृष्ण को, सूरदास ने गिरधर को, तुलसीदास ने राम को अपने गीतों में ही पाया है। भक्ति संगीत में कोई भाषा की दीवार नहीं होती। सच्चे भाव से गाया एक एक शब्द

भगवान तक पहुंचता है। जब हम बात करते हैं भक्ति संगीत की, तो ये एक मधुर वाणी होती है जो घर में सभी को पसंद आती है। ख़ास तौर से बच्चे भी इसे गुनगुनाने लगते हैं। जब हम भक्ति संगीत की ओर आते हैं, तो पूरे घर का माहौल बड़ा संस्कारमय बन जाता है, जो कि हमारे घर के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कार्यक्रम में वक्त है एक और भजन का। श्रोताओं, ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये भजन, और कार्यक्रम में अब रुख करते हैं शब्द की ओर। सिख धर्म में शब्द यानी शब्द सिर्फ अक्षरों का जोड़ नहीं है, बल्कि इन्हें जीवित गुरु माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का दर्जा दिया और हुक्म दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हर एक शब्द ही अब सिखों का गुरु है। इसलिए सिख मत्था टेकते वक्त किताब को नहीं, बल्कि उसमें लिखे शब्द को नमन करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सुरती धुन चेला, मतलब शब्द गुरु है और हमारी सुरती यानी ध्यान उसका चेला है। जब हम शब्द को गाते, सुनते और समझते हैं तो मन विकारों से हटकर वाहे गुरु से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुन लेते हैं एक शब्द, और ये शब्द है भाई युगराज सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शब्द। गायक कलाकार थे युगराज सिंह। और कार्यक्रम में अब रुख करते हैं एक कव्वाली की ओर। श्रोताओं, सुबह सुबह के वक्त नाते पाक और कव्वालियों का अपना ही महत्व है। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत और मोहब्बत में पढ़ी जाती है। ये उनकी प्रशंसा के लिए होती है, ये शायरी या कलाम के रूप में होती है। दूसरी बात अगर हम कव्वाली की करें तो कव्वाली सूफी संगीत है। इसमें अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह और इश्क हकीकी की बातें हारमोनियम, तबला, ढोलक के साथ गाई जाती हैं। कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं एक कव्वाली, इस्माइल ताज कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक कव्वाली इस्माइल ताज कव्वाल और साथियों की आवाज़ में। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आपको बता दें

0: इसी आरती के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। संगीत सतीश भाटिया का है, कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।
1: एपिसोड 173 173।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए

श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था, कलाकार थे सुरेश वाटेकर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:41 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: रामचरितमानस के अंतिम अध्याय में एक प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से पूछते हैं कि आपने 1000 योनियों में जन्म लिया है, इनमें सबसे उत्तम योनि कौन सी है। काक भुशुंडी का उत्तर था कि इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। मनुष्य योनि के सर्वोत्तम होने के जो कारण काक भुशुंडी ने गिनाए, उन्हें सुनकर न जाने क्यों पक्षीराज की जिज्ञासा शांत हो गई।

0: उन्हें फिर पूछना चाहिए था कि मानव योनि पाकर क्या मनुष्य अन्य जीव जंतुओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, और यदि है तो इसका उपाय क्या है। संभवतः तुलसीदास जी के युग में मनुष्य योनि एक वरदान ही रहा होगा। उसे देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन की अपेक्षा अन्य प्राणियों का जीवन कहीं अधिक सुखी और सुरक्षित है। बाह्य जगत की आपाधापी और अंतर मन का द्वंद्व आज मनुष्य जीवन के अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। इन तत्वों के मिश्रित प्रभाव से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ उसकी नियति बन गए हैं। इनके वशीभूत वो अपनी जीवन नैया को उस दिशा में ले चलता है जहां क्षणिक सुख तो उसे मिल जाता है, लेकिन अंततः पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह पछतावा बीते समय को वापस नहीं ला सकता, फिर पछताने से क्या लाभ। सांप जब निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या लाभ। मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति यानी अनंत सुख प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है। इस सीढ़ी तक पहुंचने के बाद यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलता नहीं तो इंद्रिय सुखों को तुच्छ जानकर वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता और इनसे दूर रहकर आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन में बंधकर वो अपने प्रत्येक कर्म को संचालित करता है। यह अनुशासन उसे आत्मानुभूति कराता है कि वो अपने में ही संपूर्ण इकाई नहीं है, वरन वो समाज का एक अंग मात्र है। शरीर तो पूरा प्राणी जगत है, मानव जगत ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पूरा प्राणी जगत का वो एक हिस्सा है। यही है वो अनुभूत जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। यही है वो अनुभूत जो मनुष्य को स्वकेंद्रित यानी स्वार्थी होने से बचाती है। समाज के हित में स्व का हित तलाशने की सीख देती है। जीवन का सुख और जीवन की सार्थकता भी इसी अनुभूति में निहित है। इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए किसी कठिन जप तप की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने जप तप के कष्टदायक कठिन मार्ग पर चलकर हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग ढूंढ निकाला है। वो मार्ग है आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का। जिसने अपने जीवन में इसे उतार लिया उसे सहज में ही वो सब कुछ मिल जाता है जो ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा में आज आप सुनेंगे संगीता शर्मा का काव्य पाठ।
2: सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ मैं जमी पर हर कदम के साथ अपनी एक पहचान रखती हूँ कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ मैं जमी पर हर कदम के साथ अपनी एक पहचान रखती हूँ और यूँ मुमकिन तो नहीं सब कुछ पा लेना जग में यूँ मुमकिन तो नहीं सब कुछ पा लेना जग में मैं अपनी हर चाह को माँ भारती के नाम लिखती हूँ मैं अपनी हर चाह को माँ भारती के नाम लिखती हूँ। एक छोटी सी रचना है मेरी धरती माता के लिए, उन्हीं के सम्मान में मैंने एक रचना लिखी है कि सहती है भार सारी दुनिया का, सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से उसके, शक्ति है सहन करने की उसमें अपार, कि शक्ति है सहन करने की उसमें अपार, इसीलिए कहलाती है ये धरती माँ सारे जग में, इसीलिए कहलाती है ये धरती माँ

सारे जग में। कभी हंसती है तो कभी रोती भी है ये, कभी हंसती है तो कभी रोती भी है ये, देखकर दुनिया का ये अजीब दस्तूर। छाया है ये कैसी कलयुग की, जिसमें हो गए अपने ही अपनों से दूर। सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से इसके। कि फर्क है विचार विचारों का, फर्क है विचार विचारों का, मानते हैं कुछ लोग यहाँ माँ है हमारी प्रथम धरती। कि अच्छे हों या बुरे हों इसके बच्चे, फिर भी सम्मान देती है अपने आंचल में सबको भरती। फिर भी संभाल लेती है सबको अपने आंचल में भरती। सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से इसके। कि कहते हैं नहीं डगमगाते कभी इसके कदम, करती है सब कुछ निस्वार्थ वो। कि नहीं डगमगाते कभी इसके कदम, करती है सब कुछ निस्वार्थ वो। तभी तो उतारते हैं सरहद पर पड़े सैनिक भाई, कर्ज उतारते हैं सभी मिलकर उनके। कि यदि बन जाए इंसान भी सहनशील धरती माँ के जैसा, तो जग से हिंसा खत्म हो जाएगी। हर इंसान सोचेगा खुद से पहले यदि सबके बारे में, तो ये दुनिया स्वर्ग से कम कहाँ रह जाएगी। कि हर इंसान सोचेगा खुद से पहले यदि सबके बारे में, तो ये दुनिया स्वर्ग से कम कहाँ रह जाएगी। कि जन्म देने वाली माँ संभालती है केवल अपने ही अंश को। कि जन्म देने वाली माँ संभालती है केवल अपने ही अंश को। लेकिन नियत तो पहचानो धरती माँ की तुम ध्यान से, हो चाहे किसी भी नीति के इंसान का भार इसके ऊपर, फिर भी ये उन्नति से उन्नत करती है हर इंसान के वंश को। फिर भी ये उन्नति से उन्नत करती है हर इंसान के वंश को। और एक रचना है मेरी कि आजकल तो सामाजिकता है, उसमें माता पिता की उम्मीद कहीं खो गई है, तो एक माता पिता की क्या उम्मीद होती है अपने बच्चों से, और बच्चों का क्या फर्ज होता है उसके लिए। संवारा था बचपन मेरा बाबुल ने बड़े चाव से। कि संवारा था बचपन मेरा बाबुल ने बड़े चाव से, मेरी हर छोटी बड़ी यादों को रखा था उन्होंने तो संभाल कर बड़े भाव से। अब आई है बारी मेरी देने को तोहफे माता पिता को। कि अब आई है बारी मेरी देने को तोहफे माता पिता को, करूंगी कोशिश मैं भी पूरी उनके देखे सपने पूरा करने को। अब सोच लिया है हमने भी जग में खुद को साबित करने को, अब घर से निकलेंगे हम भी दुनिया में अपनी पहचान बनाने को। अब ना तुमको अफसोस होगा माँ खुद पर बेटी पैदा करने को, मैं भी करूंगी नाम रोशन तेरा करके मेहनत सक्षम बनने को। अब बेटों की भांति मैं भी उड़कर आकाश को छू लूंगी, करूंगी कर्तव्य मैं भी अब ऐसे सबकी तारीफें बटोर लूंगी। कि कदम से कदम मिलाकर चलना है अब ना ये उम्मीद छोड़ूंगी, होगा जिस दिन उस गर्व मेरे माता पिता को मुझ पर, होगा जिस दिन गर्व मेरे माता पिता को मुझ पर, उस दिन मैं खुद को काबिल समझूंगी। क्या अब तो हक है मुझे जग में सम्मान पाने का, कि क्या अब तो हक है मुझे जग में सम्मान पाने का, लेकर मन में नेक इरादे मैं इस जग रूपी दर्पण से पूछूंगी। कि लेकर मन में नेक इरादे मैं इस जग रूपी दर्पण से पूछूंगी, संवारा था बचपन मेरा तो बाबुल ने बड़े चाव से, मेरी हर छोटी बड़ी यादों को रखा था उन्होंने तो संभाल कर बड़े भाव से। और अब जीवन में पिता का महत्व। कि करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। कि दिखता है दुख माँ का तो सब कुछ, पर त्याग पिता का नहीं देखा। कि करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। दिखता है दुख माँ का तो सबको, पर त्याग पिता का नहीं देखा। कि माना हमने करती बहुत कुछ माँ, कि माना हमने करती बहुत कुछ माँ, पर आराम पिता भी नहीं करता। कि करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। माँ और बच्चों की जरूरत का, क्योंकि भार पिता के कांधे पर। माँ और बच्चों की जरूरत का है भार पिता के कांधे पर, पिता अपनी जरूरत का पर भार रखे किसके कांधे पर। बच्चे रोए माँ के सामने, कि बच्चे रोए माँ के सामने, और माँ भी रो देती पिता के सामने। और पिता को सोचना सबसे ज्यादा, फिर भी वो सदा मुस्कुराए। कि करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। करने को परिवार की जरूरतें

0: पूरी किसी भी रास्ते को पिता अपनाए, कि करने को परिवार की जरूरतें पूरी किसी भी रास्ते को पिता अपनाए। बच्चों के जीवन में अधिकार जितना है माँ का, पर बच्चों और माँ पर उतना ही अधिकार है पिता का। करते हैं गुणगान सब माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। हो जितना भी भार जीवन में, पर पिता है सब सह लेता। पर हो जितना भी भार जीवन में पिता पर, पिता सब सह लेता। पर नाजायज है ये बात जब परवर इसमें बच्चों की, पिता का नाम कोई नहीं लेता। माता पिता हैं वो गाड़ी के दो पहिए, माता पिता हैं गाड़ी के दो पहिए, जिनकी सवारी करके ही बड़े होते हैं सब बच्चे। करो माता के साथ पिता का आदर और सत्कार, वरना दुनिया के सब तीर्थ करने हैं बेकार। करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। दिखता है दुख माँ का तो सबको, पर त्याग पिता का नहीं देखा। और इसी श्रेणी में एक रचना है, जिसको नहीं मिलती है उसके लिए कीमत क्या होती है रोटी की, कि कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन, कि कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन, भूखे पेट चलते चलते कट गए जब दो दिन। कि अनजान था सफर मेरा और अनजान थी मंजिल मेरी, अनजान था सफर मेरा अनजान थी मंजिल मेरी, कदम डगमगा रहे भूखे चला न जाए अब। फिर रुक गए कदम मेरे, तलाश थी अब तो केवल रोटी की, सब जरूरत से ऊपर जरूरत केवल रोटी की। कभी समय था ऐसा मौज रहती थी सब फल फ्रूट की, बादाम छुआरे काजू के आगे कीमत ना समझी थी हमने कभी रोटी की। कि समय का बदला फेर अब आ गए कहाँ से कहाँ हम, कि समय का बदला फेर अब कहाँ से कहाँ आ गए हम, कहाँ ना चलते थे एक कदम भी पैदल और अब चले जाते हैं मीलों भी हम। कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन, कि भूखे पेट चलते चलते कट गए जब दो दिन। अब आ जाए गरीबी तो बदल जाते हैं सब अपने, जब आ जाए गरीबी तो बदल जाते हैं सब अपने। गरीबी तो एक श्राप है जिसमें बिखर जाते हैं सब बुने सपने, कि आ जाती है गरीबी जब तो बिखर जाते हैं सब बुने सपने। गरीबी की कोई जात न पूछो, इसकी कोई औकात न पूछो।
1: अभी आप कार्यक्रम काव्यधारा में संगीता शर्मा का काव्य पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार होंगे।

0: एतत् स्वागतं स्मरणीयं सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत् अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत् कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारम्भम् अकरोत् एषा सेवा मण्डी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डॉनल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यम् ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम् हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो

0: चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज की जानकारी का विषय है बालों की देखभाल।
2: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बाल सदा सर्वदा घने काले बने रहें। यहां तक कि प्रौढ़ावस्था में भी चाहत यही रहती है कि उसके बाल ना तो झड़े ना ही वे सफेद होने पाएं। ये चाहत वास्तविक रूप तभी ले सकती है जब हम अपने सुंदर घने बालों की सही समय पर सही तरीके से देखभाल करें। बहुत से लोग कहते हैं कि वे यथासंभव बालों की देखभाल करते हैं, फिर भी न जाने क्यों बालों की समस्या उन्हें घेरे रहती है। वास्तव में ऐसे लोगों में से ज्यादातर को बालों की प्रकृति और प्रकृति अनुरूप देखभाल के बारे में जानकारी ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो उपाय लाभ होगा सोचकर किए जाते हैं, वे बजाय फायदे के नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हमें यदि अपने बालों के सौंदर्य को बरकरार रखना है तो अपने बालों की प्रकृति और उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखनी होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिर के बाल केवल हमारा सौंदर्य ही नहीं बनाए रखते बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करते हैं। उस समय बाल गिरने की समस्या मानसिक रूप से परेशान कर देती है, साथ ही बालों की कई समस्याएं त्वचा संबंधित रोगों का कारण भी बन जाती है। बालों को साबुन या शैंपू से धोकर साफ किया जाता है। जिस तरह से दांतों की सफाई जरूरी होती है, शरीर की सफाई जरूरी होती है, उसी तरह बालों की सफाई आवश्यक है। जहां तक नहाने वाले साबुन से बाल धोने

0: बात है तो साबुन से बाल उतनी अच्छी तरह साफ नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। ये भी देखा गया है कि लंबे समय तक साबुन से बाल धोते रहने से वे रूखे और कड़े होने लगते हैं। नतीजतन कंघी करते समय आसानी से टूट जाते हैं। बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने की परंपरा हमारे यहाँ पुराने समय से है और ये ठीक भी है। प्राकृतिक होने से इसके नुकसान कहीं भी कुछ नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने से सिर को ठंडक मिलती रहती है जो अंदर दिमाग तक को शीतलता प्रदान करती है। यदि बालों को शैम्पू से धोया जाए तब बालों की सफाई ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन बालों की प्रकृति अलग अलग होती है, अतः आपके बाल कैसे हैं पहले ये जानना जरूरी है, बाद में उस प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त शैम्पू का चयन करना चाहिए। हालांकि शुरू में ये कठिन अवश्य है, लेकिन स्वस्थ बाल बरकरार रहें इसलिए ये जरूरी भी है। शैम्पू का कार्य एक तो बालों को साफ करना होता है, दूसरे सिर की त्वचा की शैम्पू सफाई करता है। सप्ताह में यदि एक बार भी सिर की मालिश अच्छी तरह से हो जाए तो सिर दर्द जुकाम नहीं होता है, बाल काले व घने रहते हैं, साथ ही बुद्धि भी तेज होती है। सिर की मालिश इच्छा अनुसार तेल से की जा सकती है। आप जो भी तेल सिर पर लगाते हो उसी तेल से मालिश करें। सिर की मालिश चाहे कितनी ही देर करें लेकिन आवश्यकता अनुसार हल्के हाथों से करें। सिर में मालिश करने से बालों की जड़ों को शक्ति मिलती है जिससे वे झड़ते नहीं है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है वे सिर की मालिश करें, अच्छी नींद आएगी। तेल की मालिश करते रहने से मस्तिष्क क्रियाशील रहता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। यदि रात को सिर की मालिश की जाए तो दिन भर की थकावट दूर हो जाती है।
1: अभी आप कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी सुन रहे थे। विषय था बालों की देखभाल। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है पशुओं में संक्रामक रोग और देखभाल।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के संक्रामक रोग और उनके बचाव के संदर्भ में। किसान भाई, देखिए, हम पशु पालते हैं और पशु पालने का हमारा उद्देश्य होता है या तो हम दूध का उनसे उत्पादन लें या फिर हम अपने खेती के कार्यों में उनका उपयोग करें। इसके अलावा जो पशुओं का गोबर होता है वो हमारी भूमि की दशा सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुल मिलाकर ये कहें तो पशु हमारे अच्छे मित्र होते हैं, तो इनके रोग और जो भी इनमें बीमारियाँ होती हैं उनमें न लगे इसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आज जैसे हमारा विषय है पशुओं के संक्रामक रोग और उनके बचाव के विषय में आपको जानकारी देना है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि संक्रामक रोग होता क्या है। भैया देखिए, संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जिसका कोई उपचार नहीं होता है, तो वो कहलाता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों से क्या होता है, पशु की चिकित्सा बहुत अधिक महंगी हो जाती है और भाई अगर आप उसका इलाज करा भी लें तो विशेष रूप से अगर पशु दूध देने वाला है तो उसका दूध का पूरा ब्यांत मर जाता है, या गाड़ी खींचने वाला पशु है या बैल आदि है तो उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य है बहुत अधिक कमजोर हो जाता है और वो खेती के काम करने में बहुत परेशानी महसूस करता है, या यूं कहें कि उसकी क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिसे हम संक्रामक रोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये देखिए, एक तो पशुओं में प्लेग रोग होता है, उसे हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा, खुरपका मुंहपका रोग, ये बहुत ज्यादा परेशान हमारे पशुओं को करता है और बहुत अधिक मात्रा में पशु हमारे से मौत के मुंह में भी चले जाते हैं अगर इसका इलाज समय से न हो। एक होती है चेचक या माता, ये भी संक्रामक रोग है और पशु में बहुत नुकसान होता है। गलघोटू जो कि एक बहुत ही घातक संक्रामक रोग है और हमारे पशुओं की काफी मौत इससे होती है। तो उससे गिल्टी रोग होता है, लंगड़िया रोग होता है। तो ये इस तरह के जो रोग हैं इन्हें संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके पशुओं में ये रोग हो ही ना, तो भैया उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप समय समय पर टीकाकरण करें। टीकाकरण कराने का भैया सबसे अच्छी तरीका ये है कि भाई जैसे मौसम बदलता है, जैसे अब बरसात चल रही है उसके बाद जाड़े आने वाले होंगे, और या जब जाड़े खत्म होंगे फिर गर्मी आने वाली होंगी, या गर्मी खत्म होगी बरसात आने वाली होगी, यानी कि जैसी मौसम में परिवर्तन आता है तो भैया उस समय विशेष रूप से आप टीकाकरण कराएं। और टीकाकरण में ये नहीं कि भाई आपने टीकाकरण करा दिया, आपके पड़ोसी ने कराया, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि पूरे गाँव में सामूहिक रूप से अगर टीकाकरण होगा तो भैया आपका कोई भी पशु संक्रामक रोगों से ग्रसित होगा ही नहीं, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि पशुओं की कीमत आसमान को छू रही है। सब अच्छी नस्ल के पशु रखते हैं और जितनी अच्छी नस्ल का पशु होगा या जितना अधिक दुधारू पशु होगा वो उतना महंगा होगा, उसमें रोग लगने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। तो हमारा अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि भैया आप समय समय पर टीकाकरण ज़रूर करें। यदि भाई देखिए टीकाकरण कराने के बाद भी आपका पशु किसी भी संक्रामक रोग के चपेट में आ जाता है तो आप झाड़ फूंक के बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़ें, आप सीधे अपने कुशल पशु चिकित्सक को दिखाएं और उससे इलाज कराएं। हम विशेष रूप से ये अनुरोध कर रहे हैं कि अब वैज्ञानिक तरीके से कोई भी रोग का इलाज कराने का समय आ गया है। पुराने समय में झाड़ फूंक या जो देशी दवाएं थी उनसे इलाज हो जाता था, आज के समय में ये सब चीज़ें कुशल पशु चिकित्सक को दिखा के अपने पशुओं का इलाज कराइए और आपके पशु अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप भी अच्छा आनंद महसूस करें। तो हम इस कार्यक्रम के जरिए अपने किसान भाइयों से ये चर्चा करना चाहेंगे कि भैया देखिए कोई भी संक्रामक रोग आपके पशु में न लगे इसके लिए आप टीकाकरण कराएं और कुशल पशु चिकित्सक की निगरानी में रहें। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे। तो किसान भाइयों हम आज तो अपनी खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं, कल अन्य विषयों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 होने को हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें।

आज दिन में 2:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम एक और अनेक। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 1:45 पर। कलाकार होंगे विविध कलाकारों के द्वारा गाए हिमाचली लोकगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे। बाल वाटिका का प्रसारण रहेगा आज दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा रहेगी परहित पर कल्याण जीवन का सबसे बड़ा वरदान। साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और महान विभूति महान क्रांतिकारी नाना साहेब बालमुख से बच्चों से होगी बातचीत और फिल्मी संडे ये सभी का पसंदीदा कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे केंद्र से आज दोपहर 12:30 पर। आज की हमारी फिल्म होगी हीर रांझा। 12:05 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। धरती गाती है शिवानी कर्माकर के रुहेल खंडी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे आज दिन में 9:20 पर। बात आसपास की ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 9:50 पर। वाचन स्वर और संकलन है अलीना अंजुम का। इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा आज दिन में 7:31 पर। कार्यक्रम में चर्चा होगी रक्तदान महादान और एसी से होने वाले ड्राई आइस और डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए। हमारी शाम की सभा में कार्यक्रम होगा मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय होंगे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। साथ ही अन्य जानकारी में आप सुन सकते हैं

0: कहेंगे राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ई नाम। युवाणी का क्रम रहेगा आज शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में होंगी बहुत सारे बूस्टर्स, झलकी और फिल्म संगीत। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में श्री हरेंद्र कुमार सैनी, सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक किरतपुर से हमारे किसान साथी जितेंद्र कुमार की बातचीत सुनवाई जाएगी। विविधा का प्रसारण रहेगा आज शाम 6:45 पर। वार्ता का शीर्षक होगा रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। सुगम संगीत में हमारे श्रोता सुन सकेंगे गीत। कलाकार होंगी कुमकुम चट्टोपाध्याय। अदबी दुनिया में कला में शायर होंगे शाहबाज आलम। कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 7:50 पर। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर, और रात्रि 10 होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा।
1: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
4: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2000

0: 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
0: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन्य पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
2: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
1: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
3: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
1: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम

0: उद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 होने को है। लीजिए अब प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फैजुर रहमान। उलझने कितनी भी हो, आप सुलझाने की कोशिश करते रहिए। उलझने कितनी भी हो, आप सुलझाने की कोशिश करते रहिए। हो अंधेरा कितना भी जीवन में, बस सूरज सा निकलते रहिए। हो अंधेरा कितना भी जीवन में, बस आप सूरज सा निकलते रहिए। मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ जैसी। मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ जैसी, आप बस दशरथ मांझी सा हौसला रखिए। श्रोताओ बहुत बहुत खैर मकदम, स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओ जैसा कि आजकल गर्मी का प्रकोप है और हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं, ख़ास तौर से उमस से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हम धीरे धीरे वाटर कूलर, एयर कूलर और इन सब से होते होते अब आ पहुँचे हैं एसी पर, यानी एयर कंडीशनर पर। इसकी हवा बड़ी अच्छी लगती है श्रोताओ, और मन करता है कि कहीं बाहर ना जाया जाए, बस एसी में बैठे रहें, अपने काम करते रहें और गर्मी से बचते रहें। लेकिन जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं तो वहाँ कुछ नुकसान भी होता है श्रोताओ, तो ज़िक्र कर लेते हैं एसी से कुछ होने वाले नुकसान के बारे में। श्रोताओ एयर

कंडीशनर कमरे में नमी खींचकर हवा को शुष्क बना देते हैं। जब शुष्क हवा में हम सांस लेते हैं तो शरीर तेजी से तरल पदार्थ को खो देता है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है। नमी की कमी से आंखों के आंसू तेजी से वाष्पित हो जाते हैं, जिसे ड्राई आईज कहा जाता है। यही हमारी आज की जानकारी का विषय है श्रोता। और ये प्रक्रिया जो है ख़ास तौर से इसलिए होती है क्योंकि जो एयर कंडीशनर है वो कमरे से धीरे धीरे गर्म हवा को निकालते रहते हैं और उससे जो है एक शुष्क वातावरण बन जाता है। और मानव शरीर पर जो इसका सबसे पहला असर होता है वो होता है आँखों की झिल्लियों पर, जहाँ पर एक सुरक्षात्मक टीयर फिल्म लगी होती है और यह बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि अगर हम लगातार एसी के संपर्क में रहेंगे तो ऐसा हो जाता है। एसी वाले कमरे में कम प्यास लगने के कारण भी लोग कम पानी पीते हैं और ऊपर से हमारे जो बॉडी के जो तरल पदार्थ हैं श्रोता वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में हमने पानी भी कम पिया तो सीधी सी बात है कि तरलता जो है हमारे शरीर की वो कम होने लगती है। तो इससे बचने के उपाय हैं कि आप अपने एसी को बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर ना रखें, यानी कि लगभग 23 से 24 डिग्री के बीच ही इसे सेट करें। ज़्यादातर लोग इसे 16 या 17 पर सेट कर देते हैं तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। दूसरी बात है कि हवा के रुख को देखिए और उसको भी सीधे से एडजस्ट कीजिए, और पर्याप्त पानी पीना है। सबसे बड़ी बात है पर्याप्त पानी पीना है और आँखों को बीच बीच में झपकाते रहना है। तो ये एक छोटी सी हमारी जानकारी आप तक पहुंची और सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं ऑफिसेस के थ्रू या अपने घरों में एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी सी सावधानियाँ ज़रूरी हैं। श्रोताओ, आइए अब बात कर लेते हैं, आज है 14 जून और दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस आज मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। श्रोताओ, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक और बिना पैसे के लिए रक्तदान करने वाले लोगों को, यानी वॉलंटियर्स को सम्मानित करना है और सुरक्षित रक्त व रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों के जो है जागरूक करना है। श्रोताओं, इस दिवस के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत पहली बार सन 2004 में चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन यानी IFBDO और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ISBT द्वारा की गई थी। श्रोताओं, ये महत्वपूर्ण दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। उन्होंने ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक दान तीन जाने, यानी एक बार अगर आपने रक्त दान किया तो रक्त से निकाली गई रक्त की मात्रा लगभग 350 से 450 मिलीलीटर होती है और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है, यानी कि इन्हें अलग अलग विभाजित कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अलग अलग ये जो है रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि एक रक्तदान से तीन लोगों की जिंदगी बचती है। आपातकालीन स्थितियां, गंभीर दुर्घटनाएं, कैंसर के इलाज और सर्जरी के दौरान सुरक्षित रक्त की हमेशा ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है श्रोताओं। और आज का दिन है समर्पित लोगों को जागरूक करने के लिए, आगे लाने के लिए कि हम जो है इस महादान के सहयोगी बने और
अपने इस दान के द्वारा लोगों की जिंदगी को बचाएं। तो कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक गीत का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोता, और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ, और आज है 14 जून। श्रोता, आज हम याद कर रहे हैं पर्दे पर अपने मासूम अभिनय से सबको आकर्षित करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था, और आज ही की ही तारीख में उन्होंने इस दुनिया को बहुत ही छोटी सी आयु में अलविदा कह दिया। उनका निधन आज ही की तारीख में यानी 14 जून को सन 2020 में मुंबई में हुआ। सुशांत सिंह की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो शिक्षा और शुरुआती जीवन पटना में सेंट कैरेंस स्कूल से रहा उनका, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया। और ख़ास बात, बड़ी एक जानने वाली बात है श्रोताओं, AIEEE में उन्होंने 7वीं रैंक हासिल की थी। इंजीनियरिंग बीच में छोड़कर एक्टिंग और डांस में कैरियर बनाने वो फिर मुंबई आ गए। श्यामक डावर और एशले लोबो की डांस टीम का वो हिस्सा रहे, और 2000

देश में है मेरा दिल, इस नाटक से उन्होंने डेब्यू किया और 2009 से 2011 में एक नाटक आया पवित्र रिश्ता, इससे उन्हें मानव के रोल की एक बहुत ही अच्छी पहचान मिली। उन्होंने कई अवार्ड भी जीते और 2013 में उन्होंने आई एक फिल्म कोई पोचे में क्रिकेट कोच का किरदार निभाया और एमएस धोनी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार बखूबी निभाया। इसके अलावा कुछ छोटे रोल भी उन्होंने किए पीके फिल्म में 2014 में, और आखिरी उनकी फिल्म थी दिल बेचारा जो बीच में रही, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी छिछोरे, ये थी सन 2019 की रिलीज़ हुई फिल्म। वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और उन्होंने खुद की अपनी ज़मीन खरीदी थी ताकि वो चांद को देखने के लिए टेलीस्कोप लगा सकें। नासा भी वो जा चुके थे और कोडिंग, मैथ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते रहते थे और वो एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं श्रोताओं, और उन्हीं की फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के बाद श्रोताओं फिर से आपका स्वागत है और अब रुख कर लेते हैं आज की तिथि विशेष की ओर। आज है 14 जून और इतिहास के पन्ने को अगर हम देखते हैं तो 14 जून को 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था और आज ही की तारीख में यानी 14 जून को 1962 में यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई जो बाद में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA बना। 14 जून को ही 1982 में फौद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद अपने भाई की मृत्यु के बाद सऊदी अरब के राजा बने और 1983 में 14 जून को ही नासा का अंतरिक्ष यान पायनियर 10 सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून की कक्षा को पार करने वाला इंसानों द्वारा बनाया गया पहला यान बना श्रोताओं। और अब श्रोताओं रुक कर लेते हैं आज की अखबारों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने आज ये खबर को बड़ी प्रमुखता दी है, अपने मुख्य पृष्ठ पर सभी अखबारों ने इसे छापा है और ये है राम मंदिर के दान में घपले।

की जांच करेगी 3 सदस्यीय SIT और 15 दिन में देगी रिपोर्ट। लगभग 8 करोड़ से अधिक का हेर फेर हुआ है। अब तक 2.98 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। ट्रस्ट के अनुरोध के बाद शासन ने गठित की थी SIT। और एक खबर को और प्रमुखता दी है सभी अखबारों ने। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी के अपमान पर हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं सख्त और FIR करने की दी है इजाज़त। उन्होंने कहा, बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं। दैनिक जागरण ने 5,000 किलोमीटर दूर मिसाइल को भी मार गिराएगा भारत, इस खबर को प्रमुखता से अपने मुख पृष्ठ पर छापा है। और DRDO ने किया मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद भारत भी ऑपरेशनल स्तर की BMD प्रणाली से हो गया है लैस। अमर उजाला की एक खबर है, श्रोताओ, इंडियन बैंक में 3.60 यानी 3.60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और 69 कर्मियों पर FIR की गई है। इंडियन बैंक एम्प्लॉयज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मामला है।

श्रोताओं, और बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार के मुखपृष्ठ की। अखबार लिखता है, असम के जोरहाट सैन्य अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बागपत का लाल भी शहीद हुआ। वायुसेना के 5 जाबाज इसमें शहीद हुए हैं। श्रोताओं, विमान हादसे में 5 वायु योद्धाओं को खोने का दुख है। देश उनके साहस सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह है बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। 6 जवान सवार थे हादसे का शिकार हुए विमान में, और एक को पायलट को बचाया गया है। जिन लोगों की जान गई है इसमें, स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत की शहादत में कंडेरा में हुआ है शोक। और एक और खबर को प्रमुखता दी है अखबार ने, वो है अर्धसैनिक बलों के जवान केंद्रों तक पहुंचाएंगे नीट का पेपर। पूरी प्रक्रिया के दौरान 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी और भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे अपना तंत्र बनाएगा। ये थी कुछ खबरें आज के अखबारों की सुर्खियां थी। और श्रोताओ, अब आइए बात करते हैं एक और फिल्म जगत की हस्ती की, जिनके दमदार अभिनय ने माँ और सास जैसे किरदारों को जीवंत बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री किरण खेर के बारे में। उनका आज जन्मदिन है, 14 जून 1955 को किरण खेर जन्मी बेंगलोर कर्नाटक में। और कैरियर की शुरुआत की अगर बात करें श्रोताओं, तो चंडीगढ़ से उन्होंने थिएटर की तालीम ली, वहीं से थिएटर की शुरुआत हुई। पंजाबी और हिंदी नाटकों में उन्होंने काम किया। आधा अधूरा, संध्या, छाया जैसे नाटकों में उन्होंने काम किया। उनका डेब्यू रहा 1996 में मलयालम फिल्म सरदार से, और फिल्मों में उन्हें पहचान मिली कर्मा फिल्म से, बरसात और देवदास 2002 में आई थी ये फिल्म। सुमित्रा के रोल में वो काफ़ी फेमस रहीं। खामोशी, कभी खुशी कभी गम, मैं हूं ना, रंग दे बसंती, ओम शांति ओम, दोस्ता

ना कुर्बान जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से उन किरदारों को जीवित बना दिया। किरण खेर 2014 से 2019 तक चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद भी रही हैं और 2003 में देवदास के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन नेशनल फिल्म अवार्ड भी उन्हें दिया गया है 2003 में। और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में आपसे कर लेते हैं कुछ बातचीत। जैसे कि आजकल चल रहा है छुट्टियों का समय, बच्चे हैं घर पर, तो रहें उनके साथ और कुछ क्रिएटिविटी करते रहें और उन्हें भी कुछ रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दीजिए। और ख़ास तौर से बचाइए उस समय को जो वो ख़राब कर रहे हैं मोबाइल पर, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में बच्चे संलिप्त हो जाते हैं जिससे काफ़ी बच्चों के साथ नुकसान होता है। तो गुड पेरेंटिंग का सबूत दीजिए, अपने बच्चों के साथ रहिए और गर्मी में अपने को भी बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फैज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त।

साथ। अभी आप कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: पक्का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये वाकया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव

0: करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: Headline in a first, AI model pulled offline after US government intervenes. FSS AI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled, Fashion to Furness, some luxe gold watches fail the test of time. The Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman B. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुरमुस को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कायम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तावुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो स्लोवाक क्यादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनदा एक कम्युनिटी इस्तकबाल तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।

ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म पराया धन से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आरडी बर्मन का संगीत, और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जरूरी, हर पल चंदन का एहसास।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, और अब सुनते हैं फिल्म संगम का ये गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र के बोल हैं।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म संगम में। संगीत शंकर जयकिशन का था, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। आइए अब सुनते हैं साहिर लुधियानवी की ये रचना। इस गीत को खयाम ने संगीतबद्ध किया है, आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार और साथियों ने। फिल्म का नाम है त्रिशूल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का ये गीत। इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। खयाम का संगीत था और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं फिल्म उपासना का ये गीत, मुकेश की आवाज़ में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने।

अभी आपने सुना मुकेश को फिल्म उपासना में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, गीतकार थे इंदीवर। और श्रोताओ, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश है फिल्म कारवा से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, आर डी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाए फिल्म कारवा के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को है, हमारे लखनऊ केंद्र से होगी अब सामयिक चर्चा।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
2: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
3: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थ्रेटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
2: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
4: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है। और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पे थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
2: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
3: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए, और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो SP गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के, इसी में अमनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अमनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
2: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
3: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी, इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी हमें भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के हैं जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
2: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
3: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के, बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क। फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं।
2: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
4: थैंक यू वेरी मच।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे रोहेलखंडी लोकगीत। कलाकार हैं शिवानी कर्माकर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शिवानी कर्माकर के गाए रोहेल खंडी लोकगीत।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज आपने सुने रोहेलखंडी लोकगीत, कलाकार थीं शिवानी कर्माकर। और श्रोताओं, आइए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है अलीना अंजुम का।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद और मैं अलीना अंजुम आप सभी का आकाशवाणी के खास कार्यक्रम बात आसपास की में स्वागत करती हूं। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि रक्तदाताओं को सम्मान दिया जा सके और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा सके। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रक्तदान का महत्व क्या है और इससे जुड़े कुछ मिथक और सुनेंगे एक रक्तदाता की कहानी। रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा भी है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे रक्तदाता से जिन्होंने कई बार रक्तदान कर दूसरों की मदद की है।
1: मैं सजल अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री जेठमल अग्रवाल, जिला महामंत्री वैश्य समाज उत्तर प्रदेश बिजनौर।
0: आप ये बताइए कि आप अब तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं?
1: मैंने अब तक लगभग 20 से 25 बार रक्तदान किया होगा।
0: अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको रक्तदान के बाद कभी कोई परेशानी हुई है?
1: नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इस प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया सुरक्षित व आसान होती है। रक्तदान के तुरंत बाद लिक्विड डाइट या जूस और या पानी पीने की सलाह दी जाती है। रक्तदान हमेशा 18 वर्ष से और लगभग 55 वर्ष की आयु तक ही करना चाहिए, यही सुरक्षित है। इससे अधिक आयु के बाद थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है।
0: मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को रक्तदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से हम तीन जिंदगियां बचा सकते हैं। आज भी विज्ञान के पास खून का कोई विकल्प नहीं बना पाया है। इसका एकमात्र स्रोत सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है। एक बार खून देने से 650 कैलोरी बर्न होती हैं। इसलिए मेरी आज की युवा पीढ़ी से निवेदन है कि वह अपने जन्मदिन व वैवाहिक वर्षगांठ पर एक यूनिट रक्तदान अवश्य करे। जय हिंद।
0: ये थे हमारे रक्तदाता जिन्होंने बीते कई वर्षों में रक्तदान कर कई जिंदगियों को जीवन दिया है। इन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव आज साझा किया। आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं जिला बिजनौर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से और उनसे जानेंगे इस विषय में आगे।
2: हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार है। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर जिला अस्पताल ब्लड बैंक बिजनौर से बात कर रहा हूँ।
0: मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है?
2: विश्व रक्तदाता दिवस जो कि 14 जून को मनाया जाता है, ये उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। साथ ही ये लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का भी अवसर है।
0: मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि

0: रक्तदान के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?
1: रक्तदाता की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वजन कम से कम 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए और वो पूरी तरह स्वस्थ भी होना चाहिए।
0: मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को रक्तदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, यानी कि उसको किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर रक्त मिल सके।
0: अक्सर लोगों को रक्तदान के प्रति कई आशंकाएं होती हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय।
2: मैं डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद बिजनौर हूँ, और मैं यहाँ पर पिछले एक वर्ष से यहाँ पर तैनात हूँ और मैं पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कार्यों को देख रहा हूँ।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विश्व रक्तदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: देखिएगा, विश्व रक्तदाता दिवस, एक तो रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि लाखों लोगों का जीवन हर वर्ष बचाया जाता है। यह जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर, तो जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है वो सभी लोगों में अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की पहली बार खोज की थी, तो उससे पहले जितने भी रक्त चढ़ाने के प्रयास हुए थे वो सब विफल हो गए, या उनमें जो जिसको रक्त चढ़ाया गया उसको मरीज को भारी नुकसान हुआ, तो कुछ लोगों में सुरक्षित हो गया, कुछ में जो है उनका जीवन चला गया। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर ने पहली बार ये बताया कि हम लोगों का ब्लड जो है वो एक जैसा नहीं होता है, इसमें ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसमें ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो उसके बाद में जो उसी ग्रुप का ब्लड उसी व्यक्ति को, उसी मरीज को चढ़ाया जाएगा, हम ग्रुप की मैचिंग करके जब ब्लड चढ़ाएंगे तब फिर जो है ब्लड है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ और उससे बहुत भारी तादाद में लोगों की जान बचाई गई। तो कार्ल लैंडस्टीनर का जो जन्मदिवस पड़ता है वो 14 जून को पड़ता है, तो उन्हीं को जो है पूरे उन पूरी दुनिया के रक्तदाताओं को आभार प्रकट करने के लिए, जो भी रक्तदान दे करके लाखों लोगों का जीवन बचाते हैं, तो उनको आभार प्रकट करने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
0: सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जिले में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग मतलब क्या कर रहा है?
2: अब जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, यहाँ पर एक रक्तदान के लिए ब्लड बैंक की स्थापना है, और जो कि लगातार लोगों से जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो लोगों को पूरे जनपद के अंदर जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है वो ब्लड की सप्लाई करते हैं और लोगों से रक्तदान के रूप में ब्लड लेते भी हैं, क्योंकि ब्लड आता है उसके बाद ही ब्लड पूरे जनपद में दिया जाता है। वहाँ पर काउंसलर की तैनाती है, वहाँ पे प्रोफेसर की तैनाती है, डॉक्टर्स की तैनाती है, जो कि 2400 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, और जो भी स्वयंसेवक हैं उनको लगातार जागरूक करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, रक्तदान के लिए उनको प्रेरित करते हैं, तो लगातार ये क्रम बना रहता है कि वहाँ पे डोनर आते रहते हैं, पूरे जनपद के अंदर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और लोगों को रक्तदान दिया जाता है, लोगों को बदले में रक्त भी दिया जाता है।
0: तो सर, रक्तदान को लेकर के लोगों में क्या गलत फहमियाँ हैं?
2: देखिए, रक्तदान को लेकर के पहले लोगों को ये था कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या हमारा रक्त निकल जाता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन रक्तदान करने से किसी भी तरीका का कोई नुकसान नहीं होता है, इससे लोगों को फायदा होता है। इसके रक्तदान करने से एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है कि हमारा जो रक्त की जो लाल रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो, तो वो उनकी आयु 120 दिन के आसपास होती है, 120 दिन के बाद में वो ब्लड अपना आप ही डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो हमारी बॉडी के बहुत सारे जगहों पर जाकर के जमा होता है, जैसे कि वो पेनक्रियाज के अंदर जमा होता है, स्प्लीन के अंदर जमा होता है, तो उसको जमा होने से क्या होता है कि वो लगातार उन चीज़ों को डैमेज करता है। अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो पुराना ब्लड हमारा निकलता रहेगा, नया ब्लड हमारा बनता रहता है, और बॉडी के अंदर हमेशा इतना ब्लड हमेशा से रहता है कि हम 350 से 450 ml ब्लड अगर डोनेट करते हैं तो इतना ब्लड हमारे साइनसिस के अंदर पहले से ही रहता है, कि वो साइनस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड उतना ही ब्लड हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है, तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और ब्लड हमारे शरीर में लगातार बनता रहता है और जो पुराना ब्लड है वो हम डोनेट कर देते हैं और इससे किसी का जीवन बचता है।
3: सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिलावासियों के लिए आपका क्या संदेश है?
2: मेरा जिलावासियों के लिए यही संदेश है कि रक्तदान करने से, एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्तदान, रक्त से जो 3 कंपोनेंट बनाए जाते हैं, प्लाज्मा बनाया जाता है, प्लेटलेट बनाई जाती है और RBC बनाई जाती है, तीनों जरूरत के अनुसार अलग अलग रोगियों को दी जा सकती है, तो एक ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, इससे जो है रोगी की जान बचती है, आप लोगों को भी जो डोनर है।
0: तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी मंच पर किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बात आसपास की और जुड़े रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ। धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन स्वर और संकलन था अलीना अंजुम का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं,
5: मेरा नाम सचिन शर्मा और हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: और कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने
4: जी। और ये मैसेज हमारे पास आया है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, सतना, सागर और सतना, ये है MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
5: हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन।
4: अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं, व्हाट्सएप मैसेज हमें कर रहे हैं।
5: मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हेना कौसर
4: जी। और ये मैसेज हमें मिला है अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुड़ाना का। आप हमें मैसेज भेज रहे हैं सुदामा नगर खंडवा से। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की, आनंद मिलन का संगीत है, गीतकार हैं समीर।

94 570 78 288। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ये व्हाट्सएप मैसेज मिला है मोहम्मद रफ़ी सुमन, ये हैं श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीज़ा नायाब और लड्डू, श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया आगरा से हैं, सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और ये हमें मैसेज भेज रहे हैं आगरा से। साथ ही ये मैसेज है हमारे पास लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरिपतु साहू, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान, आप हमें मैसेज भेज रहे हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। ये मैसेज हमें मिला है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, मैसेज भेजने वाले हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और विलेज खटाई डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है उमैज़ा अब्दुल हादी और माज बाबू का। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने, सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे और अनुश्री बुरांडे। ये एक और मैसेज हमें मिला है इसी गीत के लिए श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख, आप सबने हमें ये मैसेज भेजा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म चौदवी का चांद का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, रवि का संगीत निर्देशन है, गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

ज़िला बिजनौर से। ये मैसेज हमें मिला है ग्राम झुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। ये मैसेज हमें मिला है उज्जैन मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं विनोद, नेहा और दीपक और मयंक। सुशीला देवी, सदानंद और कुमार गौरव हमें डाबकी रोड अकोला से मैसेज कर रहे हैं इसी गीत के लिए। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास पहुंचा है। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं। अशोक श्याम, प्रमिला श्याम, चीनू, आसमा, दीपक श्याम और अनुश्री श्याम टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म धड़कन का ये गीत। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का, गीतकार है समीर।

0: बस तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन का ये गीत। आपके व्हाट्सएप संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं और ये संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना माला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर का। हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और अनोखे लाल वर्मा, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं। एक और मैसेज हमारे पास आया है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मैसेज हमें कर रहे हैं। शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अगले गीत के लिए। और डुमराव बिहार से ही डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से ही हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, महराज अंसारी और कल्लू और मल्लू। योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया, जिला कासगंज UP से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, इन सब का मैसेज हमें आया है दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से। लाल माता, सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहरी बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म आप आए बहार आई का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे ने। निजामा नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से गीत सुनना चाहते हैं अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, चांद फारूक, मूसा करीम और इनके सभी साथी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने। बुडलाना वडशिंगी महाराष्ट्र से गीत सुनना चाहते हैं अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से गीत सुनने की फरमाइश भेजी है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार ने। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से गीत सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चनाताई गोंडा ने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्ध

गांधी और प्रतिभा गोंडाने ने। खैल बाजार पानीपत से गीत सुनना चाहते हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा ने। शिवजी कॉलोनी रोहतक से गीत सुनना चाहते हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और हंसराज हंस की युगल आवाजों में कच्चे धागे फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अब हम प्रस्तुत करते हैं सचिन जी, और जी। इसे इस गीत को सुनना चाहा है
4: जेल रोड नजीबाबाद से राधिका और प्रभा रानी जटोलिया ने, दिल्ली शहर से मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग ने, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातमा नाज अंसारी,
3: निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू धनौरी तेलीवाला से हैं,
4: दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ये गीत सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं अपने सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत अभिजीत और अलका याग्निक की।
3: फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजें हैं।

0: फैजूर भाई, अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं देती कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, तो कर लेते हैं अपने सभी श्रोताओं से नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में चालबाज फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है बादशाह फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में। गीतकार जावेद अख्तर और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

बाजीगर फिल्म में अभी आपने विनोद राठौड़ और अलका याग्निक को सुना। गीतकार जमीर काजमी और संगीत दिया था अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को गुलामी फिल्म में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण को अभी आपने सुना रंग फिल्म में। गीतकार समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में चमत्कार फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

चमत्कार फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

आपका पत्र मिला। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्मी संडे।

बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका आप सुन सकते हैं आज दोपहर 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम में आज दोपहर 1:45 पर विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम एक और अनेक, इसका समय रहेगा आज दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 5:00। आज शाम 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम में श्री हरेंद्र कुमार सैनी से जितेंद्र कुमार की बातचीत का विषय रहेगा खरीफ में दलहन की उन्नत खेती। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर श्री शशि सैनी की वार्ता का विषय होगा रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। छाया गीत आप सुनेंगे आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर कुमकुम चट्टोपाध्याय के गाए गीत सुनवाए जाएंगे। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:50 पर कला में शायर प्रस्तुत करेंगे श्री शहनवाज आलम। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 8:00 और आज रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोता। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन शर्मा जी और मैं हूं आपके साथ फैजुर रहमान।
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और श्रोताओं, जैसा कि हम स्क्रीन देख पा रहे हैं, लगातार हमें मैसेज मिले हैं और सचिन जी, ये पहला मैसेज है जिसका जवाब आपको देना है। और ये मैसेज है, आप लिख रहे हैं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जिला संभल ग्राम सिरसा से आप हैं सचिन प्रजापति, कुश प्रजापति, वैष्णवी प्रजापति, हितांशी प्रजापति और पूरा प्रजापति परिवार। आपने बड़ी ही जो है तफसील से इसमें बातें लिखी हैं। आप लिख रहे हैं, 7 जून का बाल वाटिका कार्यक्रम अच्छा लगा, नई नए जिलों के बारे में जानकारी मिली और 11 जून को सूरज के साथ साथ अच्छा लगा। और नेहा शर्मा जी ने 8:45 पर गोल्डन हिट्स भी, इन्हें बहुत पसंद आया। और आप लिख रहे हैं कि निधि भारद्वाज जी ने 11 जून को शाम की सभा में 6:55 पर छाया गीत प्रस्तुत किया, बहुत ही इन्हें मन भा गया। और 8 बजे इन्होंने गीत संध्या प्रस्तुत हुआ अलका सिंह के द्वारा, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। और 12 जून को 8:45 पर गोल्डन हिट्स ज्योति जी ने प्रस्तुत किया, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर सभी हमारे अनाउंसर्स की आप बात कर रहे हैं और लगातार आपने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज हमें भेज रहे हैं। तो सचिन जी,
1: हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पत्र इन्होंने लिखा है। और लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ साजिद फैजुर भाई
0: जी,
1: कि हमारे जो पत्र में, इस पत्र के अंदर केवल और केवल तारीफ है सचिन प्रजापति और समस्त प्रजापति परिवार जिला संभल ग्राम सिरसा से जो पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र में केवल और केवल बस तारीफ ही है। आप जब इस कार्यक्रम को सुन रहे, इतने कार्यक्रम आपने सुने, तो कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश ऐसी रहती है, क्योंकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले भी तो मानव ही हैं और उन्हें सुनने वाले भी मानव हैं। लेकिन जब हम किसी भी कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण हमारे किसी भी कलाकार के द्वारा होता है, तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश रहती है कि आगे भविष्य में एक कमी जो रह गई उसमें, उस कसक को पूरा किया जाए, सुधारा जाए और सुधार करने के बाद और अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। तो अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से हमें, हमारे श्रोताओं से मिलती है, तो हमें भी अच्छा लगता है, ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे, और अपने जो हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, उनको और एक नए ऊंचाइयों पर और एक नए स्तर पर लेकर के जाएं। तो केवल तारीफ से काम नहीं चलेगा प्रजापति भाई और समस्त परिवार, है ना। तो अगली बार जब आप पत्र लिखें, और हमारे सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप पत्र लिखें, तो पत्र लिखते हुए उसमें कार्यक्रम की समीक्षा होनी चाहिए, ना कि केवल तारीफ और तारीफ, ठीक है। तो हमारा सभी श्रोताओं से ये अनुरोध रहेगा, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ये अगला पत्र हमें मिला है और व्हाट्सएप संदेश हमें भेज रहे हैं वकार फरीदी साहब, और ये हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं, सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने भी तफसील से काफ़ी बातें लिखी हैं, आप लिख रहे हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, और हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं। हमें 13 जून का गीत तुम्हारे जो विश्वास जी ने और रीना राजपूत जी ने पेश किया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और 12 जून का गीत तुम्हारे जो ज्योति गौड़ और लोकेंद्र विश्वकर्मा जी ने पेश किया, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हेलो नजीबाद और रात के हमसफ़र जो रीना राजपूत जी ने पेश किया, बेहद पसंद आया। और 11 जून का गीत तुम्हारे नेहा शर्मा जी ने, निधि भारद्वाज जी ने पेश किया, ये भी इन्हें काफ़ी पसंद आया। और सचिन जी, काफ़ी बड़ी बातें इन्होंने कई इसमें लिखी हैं, लगभग सारी ही प्रशंसाएं इन्होंने की हैं। और इन्होंने लिखा है कि सचिन शर्मा जी ने दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम को पेश किया, और इनके मन को भा गया और ये मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद इन्होंने 9 जून को आपकी फरमाइश पेश की है रेनू कोटनाला जी ने, ये भी इन्हें बहुत पसंद आया। तो एक गहराई आप देख रहे हैं, हाँ। सचिन जी, के लगभग हमारे श्रोता ये भी मतलब क्रमवार बातों को लिख रहे हैं, और
1: हाँ
0: ये हमारे सुधी श्रोता हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और इन्होंने लिखा है कि एक शिकायत है आपसे
1: हाँ बिल्कुल
0: आज
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: शिकायत की तो बहुत ज़रूरत है हमें।
0: जी मैसेज ज़्यादा पढ़ते हैं, ख़त कम शामिल करते हैं, ऐसा क्यों? और पत्रों पर आपका ध्यान कम है आजकल,
1: हाँ
0: जब भी आप यहाँ पर पत्रों का अंबार, जबकि आपके यहाँ पत्रों का अंबार लगा रहता है,
1: हाँ
0: तो इस बारे में थोड़ी
1: हाँ
0: बात
1: ये बिल्कुल सही बात कही कि आप लोग मैसेजेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पत्रों पर ध्यान नहीं देते।
0: जी
1: तो सबसे पहले वकार भाई, आपने हमें पत्र लिखा और दिन वार आपने मतलब पिछले हफ्ते क्या क्या प्रसारित किया गया, क्या क्या आपको आपने कार्यक्रम सुना वो आपने लिखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब आते हैं आपकी शिकायत पर कि हम लोग मैसेजेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे पास हमारे एक श्रोता है, वो कभी भी हमें मैसेज नहीं करते और ये श्रोता हमारे नरेंद्र कुमार जनपद बिजनौर मेरठ से, फैजुर भाई आपको याद होगा, ये
0: जी
1: हमेशा 8-10 पेजेस का पेपर एक मैसेज लिख
0: हाँ,
1: करके
0: जो ये
1: हमें
0: कार्यक्रम
1: भेजते हैं।
0: में पढ़ पाना
1: हाँ पूरे
0: बहुत,
1: कार्यक्रम में
0: हाँ
1: अगर हम उस पत्र की समीक्षा करें
0: लेकिन
1: तो वो
0: इनका
1: संभव नहीं हो पाएगा,
0: जी
1: लेकिन
0: प्रयास
1: फिर भी हम आपको बताते हैं।
0: जी
1: पत्रों का अंबार आपने बोला, हाँ एक समय था कि जब हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र पर जो पीला वाला पोस्ट कार्ड है
0: जी
1: उससे सभी श्रोता अपना नाम और अपनी फरमाइश लिख करके या अपना जिस तरह से आपका पत्र मिला कार्यक्रम है उसके लिए प्रतिभाग करते थे।
0: जी
1: लेकिन अब जो तकनीकी जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, इसके साथ साथ हम लोगों के पास एक सहूलियत है
0: जी
1: कि
0: इंस्टेंट
1: रियल,
0: मैसेजिंग
1: हाँ
0: है,
1: इंस्टेंट
0: अगर हाँ
1: मैसेजिंग
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: रियल
0: बिल्कुल
1: टाइम में हमारा मैसेज पहुंचता है,
0: जी
1: जितने बजे हमने भेजा उतने ही बजे सामने वाले को वो मैसेज मिला। प्लस दूसरी बात, पेपर जो हम यूज़ करते हैं पत्र लिखने के लिए वो भी कम हो रहा है, उसका
0: जी
1: कंजम्पशन भी कम हो रहा है। और आप जानते ही हैं, हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि पेपर का निर्माण हम पेड़ों से होता है ना,
0: जी
1: पेड़ों की लकड़ी से जो गूदा हमें प्राप्त होता है उस पल्प, वुड पल्प को हम पेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं
0: जी
1: ना कहीं अगर हम पत्रों का इस्तेमाल अब कम करेंगे और व्हाट्सएप मैसेजिंग और इस तरह के जो
0: जी
1: मैसेजिंग पोर्टल्स हैं इनके ज़रिए अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आपने कहा कि पत्रों का अंबार, हाँ एक समय था जब पत्रों का अंबार लगा रहता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन सुविधा शुरू हुई है हमें, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, तो हमारे सभी श्रोता अपने मैसेजेस व्हाट्सएप के ज़रिए ही भेजते
0: जी
1: हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए अगर हमारे श्रोता हम तक मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। तो आप
0: जी
1: इस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए और जब भी आपको कोई मैसेज भेजना हो तो इस पर हमें ज़रूर मैसेज भेजिएगा,
0: जी सचिन जी,
1: है ना।
0: मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि कई बार जो है हमारे जो श्रोता है वो टाइप करने में थोड़ा डिफिकल्टी फील करते होंगे शायद, क्योंकि
1: हाँ
0: हैबिचुअल नहीं है,
1: हाँ
0: तो ऐसे में आप जो है अपना एक पत्र लिखे डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी राइटिंग में इमेज मैं कह रहा हूँ, तो इमेज आप
1: हाँ
0: भेज सकते हैं,
1: तो वो भी
0: और
1: सही है।
0: है ना
1: हाँ
0: उस
1: तो कुल
0: तरीके से
1: मिलाकर के
0: भी
1: मतलब
0: जी।

0: पिछले शनिवार को यानी 6 जून को रविकांत वर्मा जी ने और शिवा शुक्ला जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छा लगा। उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुहाना सफ़र गजब का रहा। रविकांत वर्मा जी ने गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में जो गीत चुने दिल को छू गए। उनके कार्यक्रम पेश करने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी उद्घोषक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। शुक्रवार को प्रातःकालीन सभा में ज्योति जी, दोपहर की सभा में लोकेंद्र विश्वकर्मा जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में लगभग इन्होंने सभी हमारे अनाउंसर जैसे कि रीना राजपूत जी हैं, विवेक प्रताप सिंह जी हैं, रेणु कोटनाला जी हैं, रेणु राजपूत जी हैं और लोकेंद्र विश्वकर्मा जी, इन रीना राजपूत जी, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है और इनके प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ, बस केवल और राशिद भाई ने पूरा विवरण लिखा है कि किस दिन कौन से हमारे जो प्रस्तोता थे वो कौन थे, है ना। तो बिल्कुल अच्छी बात है और इससे हमें बड़ा खुशी होती है कि हमारे सारे श्रोता, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनको तो सुनते ही हैं और बिल्कुल हर एक कलाकार का ध्यान रखते हैं कि कौन उस समय प्रस्तुत कर रहा है कार्यक्रम को, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पत्र में भी राशिद भाई की तरफ से फैजुर भाई हमें एक थोड़ा सा जी कमी महसूस आई और वो कमी थी हमारे जो कार्यक्रम है या उसमें थोड़ी कोई शिकवा या शिकायत हो तो अगर वो जी, हो जी। तो थोड़ा सा ऐसा ना कि खाने में केवल अगर स्वाद ही स्वाद होगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी सी मिर्च भी जरूरी है। तो इस तरह का अगर कोई स्वाद हो तो
0: राशिद जी और हाँ। सभी श्रोता जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये लगभग ये कार्यक्रम सभी अनाउंसर्स इसको सुनते हैं ताकि वो आने वाले समय में उन चीज़ों को ठीक कर सकें जो श्रोताओं तक सही नहीं पहुँच रही, तो ये भी एक बात है। अगला पत्र मैं ले रहा हूँ।
1: हाँ,
0: ये पत्र हमारे पास पहुँचा है पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, ज़िला डोडा, जम्मू कश्मीर से भेजने वाले हैं। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और जी हाँ, पुरुषोत्तम कुमार इनका नाम है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। मैं आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन जब कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेज शामिल नहीं होता तो बहुत अफसोस होता है। इस कार्यक्रम का समय बढ़ाएं और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो आपका अंदाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है।
1: लेकिन पुरुषोत्तम भाई कश्मीर से बहुत दूर से डोडा ज़िला से हमें पत्र लिख रहे हैं, तो मैं पुरुषोत्तम भाई आपको बता देता हूँ कि कोई बात नहीं, कार्यक्रम में आपके पत्र भी शामिल होते हैं, आपके मैसेजेस शामिल होते हैं और बिल्कुल आपने ये बात अभी लिखी और अभी आपका पत्र पढ़ा गया, बिल्कुल ये तो वही बात हो गई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस तरह की बातें अगर आप हमारे श्रोताओं को, हमें लगता है कि वो फील करेंगे, है ना।
0: एक इन्होंने और बात कही है और ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिसमें हंसने हंसाने की बातें हों और थोड़ा तनाव कम हो।
1: हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पुरुषोत्तम भाई जो कि हमें पत्र लिख रहे हैं ज़िला डोडा जम्मू कश्मीर से, तो उनको हम बता देते हैं हंसने हंसाने का रोज़ होता है डोज, यहाँ पर सॉलिड डोज दिया जाता है हंसने हंसाने का। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत बूस्टर्स लगातार बजते हैं और वो जो बूस्टर्स होते हैं वो हमारे सारे श्रोताओं को हंसाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा हाँ बिल्कुल यूनिक होता है, हर दिन एक नया बूस्टर होते हैं, नए बूस्टर होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा हंसना है और हंसाना है आकाशवाणी के साथ तो शाम को 5:15 मिनट पर आप युवा श्रोताओं का जो कार्यक्रम होता है युववाणी, उसे ट्यून इन करें और उसमें बूस्टर सुनिएगा। पुरुषोत्तम भाई पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पत्र लेंगे फैजुर भाई।
0: शाही मार्केट स्योहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, और इन्होंने लिखा है फैजुर रहमान जी और सचिन शर्मा जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, और इन्हें 8 तारीख को जसवंत सिंह और चरणजीत सिंह और नमित राज जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए बड़े अच्छे लगे। साथ ही 9 तारीख को वनोज मरवा जी, फरीन जी, रेणु कोठनाला जी और राजवीर जी, विवेक प्रताप सिंह जी और अलका सिंह जी, 12 तारीख को ज्योति जी और लोकेंद्र जी, 13 तारीख को रीना राजपूत जी और फैजुर रहमान जी और सचिन शर्मा जी, बहुत ही इन्हें सबके कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। और इन्होंने लिखा है सभी अनाउंसर होने बुलंद आवाज़ के साथ प्रोग्राम किया और सभी की ये तारीफ लिख रहे हैं।
1: हाँ, हमारे काफ़ी नियमित श्रोता हैं और हर कार्यक्रम में

0: से भाई शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से हर कार्यक्रम में अपनी शिरकत करते हैं, ज़रूर प्रतिभाग करते हैं अपने मैसेजेस के जरिए और अपनी प्रेजेंस को जता देते हैं अपने में, लेकिन इसमें भी केवल और केवल तारीफ ही है। तो अपने सभी श्रोताओं से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम में तारीफ नहीं, थोड़ी समीक्षा भी हो तो आनंद आ जाए। पत्र
1: जी,
0: लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है ग्राम गंदरोना से। मदन गिरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लिख रहे हैं, प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सभी प्रस्तुतकर्ता कड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बुधवार की सुबह का वर्णन करना चाहूँगा। आप लिख रहे हैं, राजवीर जी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। वैसे तो उन्होंने पूरे प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए, लेकिन गोल्डन हिट्स प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीरी फरहाद के गीत प्रस्तुत किए। बहुत ही मज़ा आ गया। और कृषि जगत में पगडंडी प्रोग्राम इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और प्रस्तुतकर्ता अंकित सैनी जी और हिमांशु रंजन जी को बधाई इन्होंने भेजी है।
0: फैजुर भाई, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता हैं नरेंद्र कुमार, जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से। वो हमें बहुत बड़े बड़े पत्र लिख करके भेजते हैं, तो सब उनका पूरा पत्र शामिल करना
1: जी
0: इस कार्यक्रम में हमारे अन्य श्रोताओं के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है अन्याय होगा।
1: जी
0: तो इस कार्यक्रम को, इनके इस पत्र को थोड़ा जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में ले लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें नरेंद्र कुमार जी जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से मैसेज भेज रहे हैं। लगभग A4 साइज़ के 6 पेज इन्होंने हमें भेजे हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जी
0: 8 पेज, हाँ छः,
1: छः पेज इन्होंने हमें
0: हाँ
1: भेजे। और 7 जून का सुहाना सफ़र इन्हें बहुत अच्छा लगा। गीत तुम्हारे कार्यक्रम की बात करें तो निधि भारद्वाज जी ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। ममता जी ने सहभागिता निभाई। इसी जोड़ी ने आपका पत्र मिला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। फिल्मी संडे कार्यक्रम में ममता जी ने बेटा फिल्म का कथानक गीत संगीत के साथ प्रस्तुत किया, इन्हें अच्छा लगा। रेनबो इंडिया चैनल के पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम का संचालन हमारी दोस्त शालिनी मित्तल ने भली भांति किया।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: ये
1: ये थोड़ा
0: बहुत सारे चैनल सुनते
1: सुनते
0: हैं
1: हैं
0: आकाश
1: उस
0: में।
1: जी उसके लिए इन्होंने देखा है। और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इन्होंने अभिमान फिल्म के गीत सुनने को इन्हें मिले। और कृपया निकट भविष्य में बारी बारी से अंकुश, अलबेला, अपना बना लो, अमानत, अजनबी, अमीर गरीब, ज्वेल थीफ, गाइड,
0: हाँ, बहुत
1: आराधना,
0: सारी फिल्मों के नाम इन्होंने यहाँ
1: दार,
0: पर लिख रखे हैं,
1: जी इन सभी
0: तो
1: के गीत
0: हाँ
1: ये
0: समय समय
1: सुने।
0: पर ये सारी फिल्मों के गीत यहाँ पर सुनाए जाते हैं। और जैसे इन्होंने लिखा कि बाजीगर फिल्म के, और ये तो अभी अभी हम जो चित्रपट संगीत है उसमें बाजीगर फिल्म का गीत भी प्रसारित किया गया
1: जी जी
0: है ना।
1: और स्वास्थ्य चर्चा, खेती की बातें।

0: सर अनिल चौधरी की रचनाएं बढ़िया लगी, सुहाना सफर और गीत तुम्हारे कार्यक्रम जसवंत सिंह जी ने, चरणजीत सिंह जी ने सहयोग से प्रस्तुत किया, ये भी इन्हें
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा
0: पसंद
1: लगा।
0: आया।
1: और अभी तो इनका पत्र समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत
0: जी
1: सारा कुछ लिखा हुआ है। और बिल्कुल दिन वार के किस कार्यक्रम में कौन प्रस्तोता थे, क्या क्या, तो ये इस तरह की जो बातें हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता है नरेंद्र कुमार, जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से हमें पत्र लिखते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इस तरह के अगर हमारे सारे श्रोता हैं तो हम थोड़ा सा एक बात और कहना चाहेंगे, केवल और केवल तारीफ से ही नहीं और हमें थोड़ा सा ऐसा भी लगना चाहिए कि आपका जो कार्यक्रम है वो हमें
0: जी ये
1: आप सुन रहे हैं तो उसमें थोड़ा समीक्षा की गुंजाइश हमेशा रहती है। और
0: हाँ,
1: केवल
0: या
1: तारीफ
0: कुछ
1: और
0: ऐसे
1: तारीफ में
0: विचार
1: हम
0: हो
1: भी
0: जी,
1: स्पीचलेस हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा
0: जी
1: कुछ समीक्षा हो कार्यक्रम की या कुछ सुझाव हो
0: सुझाव हो
1: वो दो।
0: विचार
1: हाँ
0: हो
1: बिल्कुल
0: ताकि आने वाले समय में कुछ
1: बिल्कुल
0: ऐसी योजनाएं जो आप हमें मतलब चाह रहे हैं
1: हाँ,
0: आकाशवाणी नजीबाबाद की
1: तो
0: ओर
1: उस
0: से,
1: तरह के कोई सुझाव
0: तो
1: हो
0: कुछ
1: या
0: ऐसे माइंड में हिंट आ सकते हैं तो ऐसे आप हमें बताइएगा जरूर।
1: जी। पत्र लिखने के लिए नरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैजूर भाई अगला पत्र लेंगे।
0: जी ये पत्र आया है हमारे पास हिंद ग्राम चमरोवा जिला संभल उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं ब्रजेश मिस्त्री। सोमपाल वैष्णवी दीवानश कविता सुनीता बबली और परिवार के सभी सदस्य, ये लिख रहे हैं बुधवार को कार्यक्रम सुना रात के हम सफर कार्यक्रम।

0: ठीक है, तो पत्र लिखने के लिए ब्रजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। ये एक और मैसेज हमें मिला है, व्हाट्सएप मैसेज है, भेजने वाले हैं नगीना से अनिल विनोचा जी। आप लिख रहे हैं, आप दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स को हमारा सादर नमस्कार। लास्ट वीक को मंडे और ट्यूसडे को गीत संध्या प्रोग्राम में प्ले सॉन्ग इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और हाँ। प्रेजेंटर को लॉट्स ऑफ थैंक्स। ट्यूसडे को ही सर शोभित जी के द्वारा एक मुलाकात प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और वेनसडे को दिल ने फिर याद किया, सचिन शर्मा जी ने पेश किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने इस कार्यक्रम को महान व्यक्तित्व पिताश्री पर आधारित कर दिया, बहुत ही रोचक बन गया कार्यक्रम। और रीना राजपूत जी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया रात के हम सफ़र, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। जिंदगी लाइव रक्तदान पर सार्थक बात इन्हें अच्छी लगी और संडे को चित्रपट बहुत ही सुपर डुपर हिट लगा, सचिन जी को इसके लिए मेरा नमन। दो लाइन भी लिख रहा हूँ।
0: हाँ।
1: कई दिनों से उनका कोई खत नहीं आया, दिल इस कदर बेचैन है कि आधी रात में भी आँख खुली तो उनका ख्याल आया।
0: हाँ।
1: यूं तो लोग शाम हुई अपने घर को निकल लिए और मुझे भरी चांदनी रात में भी अपने घर का रास्ता नजर नहीं आया।
0: बिल्कुल। तो अनिल भाई, आपका पत्र हमें नगीना से प्राप्त हुआ लेकिन अब कार्य और बहुत ही अच्छा आपने सटीक लिखा, लेकिन इस समय हमारे पास फैजुर भाई, हम देख रहे हैं घड़ी की सुइयां बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही हैं। तो पहले तो हम करते हैं धन्यवाद अनिल विनोचा जी को कि उन्होंने हमें पत्र लिखा, पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने श्रोताओं से कर लेते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314

0: फिल्मी संडे कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं 1992 में बनी लव ड्रामा फिल्म हीर रांझा, जिसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन हरमेश मल्होत्रा ने किया है। फिल्म में अनिल कपूर यानी रांझा, श्रीदेवी, हीर, शम्मी कपूर, चोचक चौधरी और अनुपम खेर ने कैदो चौधरी की भूमिका निभाई है। फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। आइए अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है एक शादी के दरमियान मौजू चौधरी और चोचक चौधरी के बीच कहासुनी से। दोनों अपनी दुश्मनी के कारण वहां से निकल जाते हैं। देखते ही देखते हीर जवान हो जाती है, जो अपनी दोस्त जीनत से मिलने जाती है। जीनत बताती है कि उसके गांव तख्त हजारा में सिर्फ हीर के ही चर्चे हैं। जीनत बताती है कि उसके ससुराल में चौधरी का बेटा दीदो है, जो बहुत प्यारी बांसुरी बजाता है। बचपन के बिछड़े हुए प्यार दीदो का नाम सुनकर हीर उसके बारे में सोचने लगती है। उधर दीदो के घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं, जिस पर दीदो नाराज हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है।
1: पागल तो नहीं हो गए? अरे हम तेरे भाई हैं, तेरे कोई दुश्मन तो नहीं, तेरा भला ही चाहेंगे ना। चल चल के खाना खा। आज के बाद इस घर का खाना तो क्या, पानी पीना भी हराम है।
2: रुक जा दीदो, रुक जा।
1: ऐसी धमकियां ये बहुत बार पहले भी दे चुका है, शाम तक खुद ही लौट आएगा।
0: परेशान दीदो पीर बाबा की मजार पर उदास बैठा बांसुरी बजा रहा है, जिस पर फकीर बाबा दीदो से कहते हैं कि चेनाब नदी के उस पार तेरे अधूरेपन का इलाज है, और दीदो अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ता है। उधर घर वाले परेशान हैं कि दीदो वापस नहीं लौटा है, वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। फकीर बाबा दीदो के घर वालों को समझाते हैं कि वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा है। दीदो हीर की बारादरी पर पहुंचता है, जहां दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं।
3: लगता है पीर बाबा ने तुम्हें ढूंढने में मेरी ही मदद की।
2: दीदो?
3: हाँ।

0: अपने चेहरे के इन चिराकों से पलकों की चिलमन तो उठाओ।
1: हीर अभी सभी लोगों से दीदो की पहचान छुपा कर रखती है, साथ ही वो दीदो के ठहरने का इंतजाम गांव के बाहर एक सराय में कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में तड़प रहे होते हैं।

0: सो जा।
1: चलो जी।
2: चौधरी मेरी बात, चौधरी मेरी बात।
3: अच्छा अच्छा, आप सो जाओ, डरना नहीं।
2: लेकिन
4: आपकी नजरों में चाचा को नीचा दिखाने में आज तो तू कामयाब हो गई, लेकिन तू भूल गई कि मेरा नाम कैदो है। कैदो जिसे चकमा देने से खुदा भी घबराता है।
5: उधर हीर की सहेलियां बारादरी में हीर और रांझा दोनों को प्यार करते पकड़ लेती हैं और हीर को परेशान करने लगती हैं।

0: फिर एक रात को कैदो हीर को पकड़ने के लिए पूरे घर में राख लेती है और लंगड़ा कर चाचा कैदो की चाल चल कर रांझा से मिलने चली जाती है और सुबह में कैदो की सारी पोल खुल जाती है।
1: अरे लानत है तुझ पर, लानत है। अपनी औलाद में कोई खोट हो तो लोग उस पर पर्दा डालते हैं, लेकिन तू खुलेआम हमारी मिट्टी पलीत करने पर तुला है।
2: तौबा, तौबा। चल हीरे, अंदर चल।
1: बेशरम।
3: चलो बस, ये बेचारे चाचे का कसूर नहीं, इसकी भांग का है। आप इसकी बात ही मत सुना करो, ये खुद हार कर चुप हो जाएगा। चलिए।
1: अरे जा, कुत्ते की तुम कभी सीधी हुई है? भाई साहब, भाई क्या?
0: अपनी हार से पस्त कैदो अपनी भांग पीने की आदत छुड़ाने के लिए सुल्तान के साथ रंगपुर गांव चला जाता है। इस पर हीर और उसकी सहेली बेगो बहुत खुश हैं।

0: अब घूमने के बाद हीर और रांझा बारादरी पर लौटते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर चौधरी, सुल्तान, कैदो और माँ सब लोग देख लेते हैं और हीर और रांझा को जुदा कर देते हैं। हीर अपनी माँ को बताती है कि रांझा कोई आम आदमी नहीं बल्कि तख्त हजारी गांव के मौजू चौधरी यानी कि उनके जानी दुश्मन का छोटा बेटा है। इस गम में हीर के अब्बा चोचक चौधरी ने खाना छोड़ दिया है। हीर उन्हें मनाने के लिए जाती है।
1: फिर अपना खून ही मुझसे दगा करता रहा।
2: अब्बा, मैंने किसी से कोई दगा नहीं किया। मेरा यकीन करो अब्बा, यकीन का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। खून के रिश्ते में सिर्फ जज्बात की बंदिश होती है मगर यकीन के रिश्ते में रब बसता है। यकीन है तो रब है, यकीन नहीं तो रब भी नहीं। मेरा यकीन करो अब्बा, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बख्श दो अब्बा।

0: अब रांझा हीर का हाथ मांगने उसके घर चला जाता है, लेकिन चौधरी और सुल्तान रांझा को जान से मारने पर आमादा हैं, जिस पर रांझा कहता है,
1: वो ख्वाब मैं हूँ चौधरी जी। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है, आज तू यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा, यहाँ से चला जा गुस्ताख। अपनी जान की सलामती चाहता तो मकसद पाक हो तो मौत कुर्बानी बन जाया करती है चौधरी जी। मेरा इश्क मेरा मकसद बन गया, ऐसी सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान कर दूं मैं उस पर।
0: और चौधरी राजी हो जाता है।
2: जाइए और अपने घर के किसी बड़े बूढ़े को पैगाम देकर हमारे यहाँ भेज दे, जब तक वो खुद चल कर हमारे यहाँ नहीं आते मेरी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं। आखिर हर चीज का कोई कायदा होता है, हर चीज का कोई कायदा होता है।
0: सुल्तान चोचक चौधरी से नाराज है और कैदों ने चौधरी से कह दिया है कि अगर इस गांव में रांझा बारात लेकर आएगा तो पूरा गांव मिलकर मौजू चौधरी के परिवार को खत्म कर देगा। जब दीदो यानी रांझा ये बात अपने घर वालों को बताता है तो वो

चोचक चौधरी को मौजू चौधरी के बेटों का पैगाम मिलता है, जिसमें वो चौधरी को शादी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन ये पैगाम चालाकी से कैदू ने भिजवाया था। गांव के लोग चौधरी से पूछ रहे हैं कि अब भी तुम गांव के साथ हो या अपनी बेटी के साथ हो। काजी साहब हीर को कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेकिन हीर नहीं झुकती है। अब गांव वालों की बातें सुनकर चौधरी हीर के निकाह के लिए हामी भर देता है। हीर निकाह कबूल करने को मना कर देती है। उधर अब बारात नाराज है और वो लोग बोल रहे हैं कि अगर निकाह नहीं हुआ तो हम चौधरी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। हीर को मनाते हुए चौधरी अपनी पगड़ी हीर के कदमों में रख देता है। इस पर हीर निकाह के लिए हाँ कह चुकी है। उदास हीर डोली में बैठकर अपने ससुराल के लिए रुखसत होती है। उधर रांझा झम गांव पहुंचता है, जिस पर उसे पता चलता है कि कैदों की चालबाजियों के चलते हीर का निकाह हो चुका है। रांझा ऊपर वाले से अपनी आखिरत मांगता है। हीर और उसके पति के बीच कहासुनी होती है। हीर कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसका पति सैदा ऐसा करने से मना कर देता है। हीर की ननद ये सब भांप लेती है और हीर से इसके बारे में पूछती है, और ननद हीर को अपने इश्क मुराद के बारे में भी बता

हीर को ढूंढते हुए रांझा एक आश्रम में जा पहुंचता है, जहां उसकी बात आश्रम के गुरुजी से होती है, जहां आश्रम के गुरुजी अपनी विद्या से जान लेते हैं कि रांझा को हीर की जुदाई का गम है। हीर की ननद हीर से कहती है कि आज वो अपने मुराद के साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। हीर भी रांझा को याद करके रोने लगती है। उधर रांझा तड़प कर हीर को ढूंढता फिर रहा है और हीर के गाँव आ पहुँचता है। हीर साधु के भेष में रांझा को पहचान लेता है। हीर की ननद साधु से हीर को मिलवा देती है। हीर और रांझा अब दोनों काला बाग में मिलते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन हीर का पति सैदा दोनों को पकड़ लेता है और रांझा को मारने लगता है। तभी वहां पर राजा के सैनिक आ पहुंचते हैं और सबको लेकर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा के दरबार में काजी दलीलें देता है। कैदू चौधरी भी आकर हीर और रांझा के खिलाफ गवाही देता है, लेकिन हीर का भाई सुल्तान राजा के सामने गवाही देता है कि उन्होंने हीर की शादी जबरदस्ती करवाई थी, इसलिए हीर सैदा को छोड़कर रांझा के साथ जाना चाहती है। राजा अब अपनी दलीलों से काजी के झूठ को पकड़ लेता है।

गाजी अब अपना गुनाह मान बैठता है। राजा अब हीर और रांझा के निकाह की तैयारी का आदेश देता है। उधर कैदू इस निकाह से परेशान है और धोखे से जहर मिला लड्डू हीर को खिला देता है और वहां से भाग जाता है। खबर सुनते ही रांझा बारात छोड़कर हीर के पास आ जाता है। रांझे की बाहों में हीर दम तोड़ देती है। बचा हुआ लड्डू रांझा खा लेता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं।

0: जीते जी तो ना सही, मगर मर कर हीर रांझा एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में एक और फिल्म के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: फिल्मी संडे,
2: फिल्मी संडे,
1: फिल्मी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजर सराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said

0: said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country. Based on the ED complaint, Bengaluru's Kothanur police registered the case on June 11 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Unlawful Activities Prevention Act. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatnatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamese Lia Sri Lanka, was held at Gale Phase Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatnatyam while fostering cultural ties across borders. Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to the IMD, conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, additional parts of Odisha and parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped 2 clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाए और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
2: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, अगर आपका कोई दोस्त उदास हो, आप उसे अपनी कोई चीज़ दे दें, पेंसिल, रबर या कुछ भी, या उसके साथ आप अपना टिफिन शेयर करें, तो आपको कैसा लगेगा? आप यही कहेंगे ना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला सोचते हैं, किसी को खुश करते हैं, तो इसे कहते हैं परहित। और जब हमारे अच्छे कामों से किसी का भला होता है, तो वो होता है कल्याण। परहित और कल्याण जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो सामने वाला खुश होता है और हमारे मन को भी बहुत खुशी मिलती है। किसी को पानी पिलाना, चीज़ें मिल बांट कर खाना और सबके साथ प्यार से रहना, बच्चों ये छोटे छोटे अच्छे काम दुनिया को सुंदर बना देते हैं। तो बच्चों, सबका भला करेंगे हम, मिलकर आगे बढ़ेंगे हम, प्यार बांटेंगे हर दिन हर पल, और खुशियों से भर जाएगा कल। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं जानकारी विश्व रक्तदाता दिवस की, विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, और महान विभूति क्रम में हम जानेंगे महान क्रांतिकारी नाना साहब के विषय में, और आओ जाने क्रम में हम आपको ले चलेंगे चिल्का झील की सैर कराने के लिए, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे प्यारी सी कहानी और एक प्यारा सा गीत भी। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें कार्यक्रम बालमुख में। आइए बात करते हैं अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों से, पहले जानते हैं उनसे उनका परिचय।
1: मेरा नाम शौर्य है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
0: तो शौर्य, आपकी ये छुट्टियाँ कैसे चल रही हैं?
1: दीदी, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं अभी घूम कर आया हूँ और मेरा हॉलीडे होमवर्क अभी करना स्टार्ट किया है।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि शौर्य घूम कर भी आ गए और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हैं। तो अच्छा शौर्य, ये बताइए कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है?
1: दीदी, वैसे तो मुझे खाने में सारी चीजें पसंद है, लेकिन मुझे फ्रूट ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि शौर्य को फ्रूट्स पसंद है। तो आइए चलते हैं, शौर्य से पूछते हैं सुने और क्या क्या पसंद है।
1: मुझे खेलना पसंद है और मुझे साइंस पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा शौर्य, आप हमें ये बताएं, आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी दीदी, मैं रेडियो सुनता हूँ, मेरे परिवार में सब लोग रेडियो सुनते हैं।
0: तो आप ये बताएं शौर्य कि आपको रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है?
1: दीदी, मुझे रेडियो में बाल वाटिका सबसे अच्छा लगता है।
0: अच्छा, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे बाल वाटिका सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें बताई जाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं।
0: अच्छा, तो शौर्य को भाई हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है। तो शौर्य, आप हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: जी दीदी, मैं कविता सुनाना चाहूँगा। शब्दों में नहीं कर्मों में बसता है, जो कभी ना झुके वो शौर्य कहलाता है। आंधियां भी जिससे डर जाए, हर चुनौती से जो टकरा जाए, नन्हे कदमों में भी हो बड़ी उड़ान, दिल में हो भरता माँ का सम्मान, हर दिन हो जैसे एक नया संग्राम, पर ना हो शिकवा ना कोई थाम। चलो सलाम करे ऐसे जज्बे को, जो हर दिन खुद से ही जीतता है। शौर्य है वो जो हर दिल में बसा है, एक नाम नहीं वो हिम्मत की कथा है।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई शौर्य ने, और शौर्य ने अपने ही नाम का मीनिंग बता दिया। तो बहुत अच्छी लगी शौर्य की कविता। अब चलिए चलते हैं अपने अगले नन्हे मुन्ने दोस्त से बात करते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका नाम।
2: मेरा नाम मिष्टी है।
0: मिष्टी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: LKG।
0: LKG में। तो मिष्टी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है?
2: सबसे अच्छी मुझे आलू की सब्जी लगती है।
0: आलू की सब्जी। तो मिष्टी, आज मम्मी ने क्या बनाया है?
2: आलू की सब्जी से चावल।
0: ओह, तो मिष्टी ने आलू की सब्जी और चावल खाए हैं। तो मिष्टी, आज हमारे साथियों को आप कुछ सुनाएंगी?
2: जी सुनाऊंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं मिष्टी से पोयम।
2: बंदर मामा पैंट पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, देखा नहीं केले का छिलका पैर गया फिसल पड़े।
0: बहुत प्यारी कविता है, लेकिन एक कविता से हमारे बच्चों का मन नहीं भरा होगा, तो क्यों ना मिष्टी से एक और कविता सुन ली जाए।
2: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ के तो डर जाएगी, बाल निकालो के तो मर जाएगी।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले दोस्त से बात करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं उनसे उनका नाम।
3: दीदी मेरा नाम रुद्र है।
0: रुद्र आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: दीदी मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: तो रुद्र जैसे हमारे और बच्चों ने बताया तो आप भी बताइए आपको खाने में क्या क्या चीज़ें

0: पसंद है?
1: दीदी, मेरे को बाहर की चीजें बहुत पसंद है, लेकिन कोई घर पे खाने नहीं देता है।
0: तो रुद्र, ये तो अच्छी बात है कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं आपको बाहर की चीजें नहीं खाने देते हैं, क्योंकि बाहर की चीजें नुकसान करेंगी। तो रुद्र, आप बताइए, क्या आप भी रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा, आप क्या रेडियो पर बाल वाटिका सुनते हैं?
1: हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाल बाटी का सुनना।
0: तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है बाल वाटिका में?
1: सबसे पहले तो मुझे दीदियों का बोलना बहुत अच्छा लगता है।
0: और क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मेरे को और कहानियां अच्छी लगती
0: ये
1: हैं।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि रुद्र को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है और वो उन्हें हमारे कार्यक्रम में कहानी अच्छी लगती है। तो रुद्र, आप हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: दीदी, मैं एक कविता सुनाऊंगा। यह शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर नहीं किसी का छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में हम अप...

0: ही नजर में है। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में हम। अब
1: विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून, कभी किसी बीमारी, ऑपरेशन या दुर्घटना की वजह से किसी व्यक्ति को तुरंत खून की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे समय में जो लोग अपना रक्त देकर उनकी मदद करते हैं उन्हें रक्तदाता कहते हैं।

उनके पास का अनुभव का खजाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल होता है। वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं और हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम उन्हें आदर देते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चों, रक्तदान से किसी को नया जीवन मिलता है और बुजुर्गों के सम्मान से उनके जीवन में खुशियां आती हैं। बच्चों, याद रखिए, मदद करने वाला दिल सबसे बड़ा होता है और सुंदर होता है, और बड़ों का सम्मान करने वाला बच्चा सबका प्यारा बन जाता है। तो बच्चों, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: बच्चों, महान विभूति क्रम में आज हम बात करेंगे नाना साहब पेशवर की, जो भारत के महान क्रांतिकारी में से एक थे। उनका पूरा नाम धुंधुपत था, लेकिन वे नाना साहब पेशवा के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाना साहब का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। वे बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और देशभक्त थे। बच्चों, जब अंग्रेजों ने उनके अधिकार छीन लिए और उन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, तब नाना साहब ने इसका विरोध किया। सन 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और कानपुर में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और लोगों को आज़ादी के लिए एकजुट किया। बच्चों, वो चाहते थे कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो और अपने लोगों का शासन हो। प्यारे बच्चों, नाना साहब के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने देश के सम्मान और आज़ादी के लिए हमेशा हिम्मत और एकता के साथ खड़े रहना चाहिए। नाना साहब का नाम भारतीय इतिहास में एक महान वीर और क्रांतिकारी रूप में हमेशा याद किया जाता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी महान क्रांतिकारी नाना साहब के विषय में, और आगे पढ़ने से पहले सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बालवाटिका, और वैसे तो ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए है, पर हम चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब सुने और अपने सुझाव हमें पत्रों द्वारा ज़रूर भेजें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, वैसे गर्मियों का मौसम है तो कहीं घूमने चलते हैं, तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं चिल्का झील। बच्चों, ये झील उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बच्चों, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है और दुनिया की सबसे तटीय लैगून में गिनी जाती है। और इस झील की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर साल सर्दियों में दूर दूर देशों से हजारों रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी आते हैं, और ये पक्षी ठंड के मौसम में यहाँ कुछ समय बिताते हैं। और जब ये पक्षी झील के ऊपर उड़ते हैं तो पूरा आसमान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसी वजह से चिल्का झील पक्षियों के लिए बहुत खास मानी जाती है। और इस झील की एक और खास बात है बच्चों, यहाँ डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। ये डॉल्फिन पानी में उछलती हैं, जिन्हें देखना बहुत ही मज़ेदार लगता है। और झील के आसपास छोटे छोटे द्वीप भी हैं, इनमें से काली जय टेम्पल जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ लोग दर्शन करने भी जाते हैं। बच्चों, चिल्का झील को प्रकृति का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी, पक्षी, मछलियाँ और डॉल्फिन सब एक साथ मिलते हैं।

0: तो आप लोग अपने पेरेंट के साथ और उनसे कहिएगा कि वो आपको एक चिल्का झील तो जरूर ले चलें, और वहां आपने क्या-क्या देखा और क्या-क्या मजे करे हमें भी आकर जरूर बताएं। तो बच्चों, अभी हमारे पिटारे में आपके लिए और भी मनोरंजन है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये सूचना।
1: महिला

0: वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: बच्चों, आप लोग को पता है कि आजकल सड़कों पे देखिए कितना ट्रैफिक होता है और कितने वाहन आते जाते रहते हैं, लेकिन आप बच्चे जो हैं वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं और ऐसे भागते चलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। तो क्यों ना एक टिप्स हो जाए कि एक ज़रूरी बात सीख लें आज कि सड़क सुरक्षित तरीके को कैसे पार करें। तो बच्चों, पहला नियम है कि हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें, जहां सफ़ेद सफ़ेद पट्टियां बनी हो वहीं से जाना चाहिए। और हमारा दूसरा नियम है, पहले दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें और फिर दोबारा दाईं ओर देखें, अगर सड़क खाली हो तभी आगे बढ़ें। और तीसरा नियम है, लाल बत्ती पर रुकना है, हरी बत्ती पर चलना है और ट्रैफिक सिग्नल हमारी सुरक्षा करते हैं। चौथा नियम है, सड़क पर कभी दौड़ना नहीं है, आराम से चलना है ताकि गिरे नहीं। और पांचवा नियम है, छोटे बच्चे हमेशा मम्मी पापा या बड़ों का हाथ पकड़कर सड़क पार करें। और छठा नियम है, चलते समय खेलना या इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सड़क पर हमेशा ध्यान से चलना है। और बच्चों, सड़क पार हम ध्यान लगाएं, नियम माने, सुरक्षित जाए। तो अगर बच्चों हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारी कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। और आपकी मम्मी जो हम लोगों से शिकायत करी कि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं और सड़क पे ऐसे बिना मम्मी का हाथ पकड़े भागे चलते हैं, तो इसलिए आपको ये सड़क के नियम बताए गए हैं और हमें उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अब हमें बच्चों जो हैं हमारे, उन्हें इंतज़ार है हमारी कहानी का। तो चलिए सुन लेते हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है सच्चा दोस्त। बच्चों, एक घने जंगल में एक हिरण और एक खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरण का नाम चंचल और खरगोश का नाम था बुद्धू। चंचल अपनी तेजी और बुद्धू अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। वे दोनों जंगल में खेलते और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते। एक दिन जब वो खेल रहे थे तभी एक शिकारी ने चंचल को देखा और उसे पकड़ने की सोची। शिकारी ने क्या करा, चुपके से चंचल के आसपास जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। और वो जाल में फंसकर बेचारा बहुत डर गया। उसने बुद्धू को मदद के लिए पुकारा और बुद्धू ने जब देखा कि चंचल मुसीबत में है तो उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो शिकारी के पास गया और उसे दूसरी दिशा में भटकाने लगा। बुद्धू ने शिकारी को दूर एक हिरण के होने का झूठा विश्वास दिलाया और शिकारी जो है बुद्धू के झांसे में आ गया और उसी दिशा में चला गया। इसी बीच बच्चों, बुद्धू ने चंचल को जाल से मुक्त कर दिया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि चंचल तो जाल से गायब था। वो बहुत गुस्से में था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर वो दोनों जंगल की गहराई में भाग गए और इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई और चंचल ने बुद्धू की चतुराई और साहस की बहुत प्रशंसा की। बुद्धू ने चंचल से कहा कि दोस्ती में सबसे बड़ी बात है एक दूसरे की मदद करना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और पूरे जंगल में भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय आपका साथ नहीं छोड़ता, हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। इसी तरह चंचल और बुद्धू की कहानी आज भी जंगल में सच्ची दोस्ती के मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, सच में जो दोस्त होता है ना वो सबसे खास होता है। आप कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फ्रेंड से उस बात को कह सकते हैं। और जो सच्चा दोस्त होता है वो हमारी प्रॉब्लम को सुनकर उसका मजाक नहीं उड़ाता है बल्कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बालवाटिका और अभी बाकी है आपके लिए एक सुंदर सा गीत।

तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये गाना ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए कुछ आसान सी बातें सीख लें। बच्चों, इस मौसम में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए जो ढीले और आरामदायक हों, और बाहर जाते समय टोपी, कैप या छाता ज़रूर साथ रखें, और खूब सारा पानी पिएं। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी भी पी सकते हैं, और फलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल खाएं। और बच्चों, बासी और खुला हुआ खाना तो बिल्कुल ना खाएं, और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में जाने से तो विशेष कर बचें। यदि बाहर जाना है और बहुत ज़रूरी है तो सिर ढक कर जाएं, और खेलना तो सुबह या शाम को ही खेलें, और खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, रोज़ नहाएं और साफ कपड़े पहनें, और पानी हमेशा साफ और ढका हुआ ही पिएं। तो बच्चों, अगर आप इस ट्रिप को अपनाते हैं तो देखिए आपकी छुट्टियां कैसे मज़ेदार तरीके से बीतती हैं। तो चलिए, वैसे तो हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, लेकिन आज आपसे एक पहेली पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं फिर भी घर घर घूमती है? अभी नहीं सुना आप लोगों ने, तो चलिए एक बार और बताते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं फिर भी घर घर घूमती है? तो वैसे तो आप लोग को इसका आंसर आता होगा, चलिए हम भी बता देते हैं। इसका उत्तर है चिट्ठी। यानी कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने पत्रों द्वारा हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन कोड 2467-63। तो प्यारे बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लोकधारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत।

0: partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2-3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्ण

0: पूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे

0: सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक।

एक और अनेक कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने जा रहे हैं मशहूर बॉलीवुड निर्देशक, लेखक और निर्माता इम्तियाज अली के बारे में। इम्तियाज अली का जन्म 16 जून सन 1971 में हुआ था और ये एक प्रमुख भारतीय फिल्म निर्माता हैं। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्में सोचा ना था जो सन 2005 में रिलीज़ हुई, जब वी मेट 2007 में और लव आजकल जो कि 2009 में, इन फिल्मों के लेखन और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इन्होंने ड्रामा फिल्म्स यानी कि रॉकस्टार 2011 में, हाईवे 2014 में, तमाशा 2015 में, जब हैरी मेट सेजल

रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित और निर्मित एक फिल्म लव आजकल से ये गीत। आवाज है राहत फतेह अली खान की।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं, इम्तियाज अली को उनकी फिल्म जो कि सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी यानी कि लव आजकल, अब तक की उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली जिससे अली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन प्राप्त हुआ। इसे कल्ट स्टेटस प्राप्त हो गया है और इसे उस शुद्ध प्रेम की भावना के चित्रण के लिए सराहा गया है जो कभी नहीं बदलती। हालांकि समय के साथ अपने जीवन साथी को पहचानने का नजरिया बदल जाता है, तो हम बात कर रहे हैं लव आजकल। आइए सुनते हैं इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित एक और फिल्म रॉकस्टार से ये गीत। आवाजें हैं मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: अली द्वारा निर्देशित फिल्म रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी अभिनीत संगीतमय रोमांटिक ड्रामा रॉकस्टार बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें अली के निर्देशन, कपूर के अभिनय और एआर रहमान के संगीत की खूब सराहना की गई। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन दिलवाया। अब इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा प्राप्त हो चुका था और इसे अक्सर बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित संगीतमय रोमांटिक फिल्मों की सूची में भी स्थान दिया जाता है। रॉकस्टार के बाद अली ने होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कॉकटेल, जो कि सन 2012 में रिलीज हुई थी, इसकी कहानी और पटकथा लिखी, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखी इस फिल्म कॉकटेल का ये गीत आरिफ लोहार और हर्षदीप कौर की युगल आवाजों में।

इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित फिल्म, जो कि युवावस्था पर आधारित रोमांटिक ड्रामा थी, यानी कि तमाशा, सन 2005 में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिकाएं इस फिल्म में निभाई। भारी प्रचार के बावजूद फिल्म को व्यावसायिक रूप से औसत सफलता मिली, लेकिन रिलीज होने पर कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुईं। हालांकि अपने विषय के कारण इसे कल्ट फिल्म का दर्जा प्राप्त हो गया और इससे अली की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में मान्यता भी दे दी गई। और अब आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म से ही अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब हमारी सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 300 देशवासियों के लिए अनाज, फल और सब्जियां पैदा करते हैं, लेकिन कई बार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसी समस्या को दूर करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हम ऐसी ही दो महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें जो चर्चाओं का विषय है वो इस प्रकार से है, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ईना। तो आइए पहले बात करते हैं देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर। श्रोता, पिछले कुछ दशकों में खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इससे उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में जैविक खेती एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प के रूप में सामने आई है। जैविक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और प्राकृतिक जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसल भी अधिक पौष्टिक होती है। श्रोताओं, आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, इसलिए जैविक फल, सब्जियों और अनाजों की मांग लगातार बढ़ रही है। जब बाजार में किसी उत्पाद की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। यही वजह है कि जैविक उत्पाद सामान्य उत्पादों की तुलना में अधिक कीमत पर बिकते हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और इसके अलावा जैविक खेती में रासायनिक खादों पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। किसान स्थानीय संसाधनों से खाद्य तैयार कर सकते हैं, इससे खेती की लागत घटती है और लाभ बढ़ता है। जैविक खेती से केवल किसान ही लाभान्वित नहीं होते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय में वृद्धि, इन सभी दृष्टियों से जैविक खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। अगर हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 20 से 50 किसानों का एक समूह यानी क्लस्टर बनाना पड़ेगा। किसान भाई अपने जिला कृषि कार्यालय में व्यापारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के जैविक खेती पोर्टल पर भी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और सरकारी जैविक खाद, बीज और खेती के लिए आर्थिक मदद भी यहीं से दी जाती है। तो श्रोता, आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम की दूसरी योजना के संदर्भ में। वो योजना है राष्ट्रीय कृषि मंडी ईना। श्रोताओं, किसानों की आय बढ़ाने के दिशा में ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ई नाम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये योजना साल 2016 में लागू हुई थी और ये योजना भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश की विभिन्न कृषि मंडियों को आपस में जोड़ती है। पहले किसान अपनी फसल केवल स्थानीय मंडियों में बेचते थे। कई बार उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता था क्योंकि खरीदार सीमित होते थे और बाजार की जानकारी भी कम होती थी, लेकिन ईनाम के माध्यम से किसान अपनी उपज को देश भर के खरीदारों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे अधिक खरीदार बोली लगाते हैं और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलता है। ईनाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है। किसान ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनकी फसल का मुख्य मूल्य विभिन्न मंडियों में कितना चल रहा है। इससे उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

यानी श्रोताओं, ये किसानों के लिए पूरे देश की एक डिजिटल मोबाइल मंडी है। ई नाम के आने से देश भर की मंडियां इंटरनेट से जुड़ गई हैं। अब किसान अपनी फसल की जानकारी ऑनलाइन डाल सकते हैं। इससे किसान को अपनी फसल का सबसे अच्छा दाम मिलता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं किसान भाई इस योजना के लिए आवेदन और लाभ कैसे लें। तो इसके लिए किसान भाई अपने मोबाइल में ई नाम ऐप डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट enaam.gov.in पर भी फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रोता, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ई नाम से जुड़े व्यापारी अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की मदद से वहां के काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और पैसा सीधा आपके बैंक में आ जाता है। श्रोता, जैविक खेती और ईनाम दोनों ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी योजनाएं हैं। जैविक खेती खेती की लागत कम करती है और ईनाम फसल का अच्छा दाम दिलाने में मदद करता है। अगर किसान इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाएं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारा देश कृषि के क्षेत्र में और अधिक उन्नति करेगा। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर और आज ही रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत सुनिएगा

विश्व रक्तदाता दिवस पर एक विशेष वार्ता। रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। वार्ताकार होंगे शशि सैनी। अब से कुछ ही समय में यानी शाम 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे कुछ खास है आज, झलकी, बूस्टर्स और फिल्म संगीत। आज शाम 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत खरीफ में दलहन की उन्नत खेती विषय पर स्थलीय रिकॉर्डिंग। इस संदर्भ में आप सुनेंगे हरिंद्र कुमार सैनी, सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक किरतपुर से जितेंद्र कुमार की बातचीत। साथ ही कार्यक्रम के इसी अंक में विश्व रक्तदान दिवस और खेती से आधुनिक मुनाफा कमाने के आधुनिक तरीके विषय पर चर्चा भी की जाएगी। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर सुनिएगा कुमकुम चट्टोपाध्याय से कुछ गीत। कार्यक्रम अदबी दुनिया में आज शाम 7:50 पर लुत्फ लीजिएगा शाहबाज आलम के चंद कलामों का। श्रोताओं, ये थी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और अब आइए आपको बता दें कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कल सवेरे 9:15 पर सुनिएगा लखनऊ केंद्र से प्रसारित जिले की हलचल। कल रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले किया जाएगा। भूले बिसरे फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कल रात्रि 10:00। कल सवेरे 7:31 पर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में जानकारी के विषय रहेंगे विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर सुनेगा रजनी टॉक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और इसी क्रम में कल दिन में 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में आप सुन सकते हैं दया शंकर फुलारा के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। कल सवेरे 9:50 पर कार्यक्रम बात आसपास की और दोपहर 12:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। कल दोपहर 12:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में निषाद खान के सितार वादन का। परिवार जगत ये कार्यक्रम हमारी बहनें सुनेंगी कल दिन में 1:15 पर। कल शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में जानकारी का क्रम होगा भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं, क्रमशः राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। कल शाम 5:15 पर युवाणी में मुख्य आकर्षण रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार, बूस्टर्स और फिल्म संगीत। कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे AI और कृषि विषय पर डॉक्टर मोहम्मद अवैस सहायक प्राध्यापक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से नरेश पाल की बातचीत। और साथ ही इसी अंक में गन्ने की फसल में उर्वरक प्रबंधन और प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना पर चर्चा भी की जाएगी। कल शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा वार्ताकार शौकीन अहमद की प्रदूषण नियंत्रण में आमजन की भूमिका विषय पर वार्ता। श्रोताओ ये थी जानकारी आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ यादगार पल बिता रहे होंगे।
1: जी हाँ, और साथ ही जुड़ भी गए होंगे हमारे और हमारे सभी लिसनर्स के फेवरेट प्रोग्राम युववाणी से। और आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम, मैं आपकी अपनी साथी शिवानी।
0: दोस्तों, शिवानी के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी। वैसे शिवानी, जिंदगी कभी कभी कितना अजीब सा खेल खेलती है ना। कभी ये हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी सिखाती है तो कभी बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती है।
1: लेकिन जलोनी, पता है इस पूरे सफर में अगर कोई चीज हमेशा हमारे साथ चलती है तो वो होती है यादें। जी हाँ, और उन यादों को जिंदा रखने का काम करता है म्यूजिक।
0: बिल्कुल, यादें कुछ हंसी की, कुछ मुस्कुराहट की। शिवानी, तुमने बिल्कुल सही कही ये बात। वैसे कभी गौर किया है तुमने कि कुछ गाने जो होते हैं वो सिर्फ गाने नहीं होते बल्कि दिलों की धड़कन होते हैं। किसी दोस्त की हंसी होते हैं, किसी अपने की आवाज होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सलोनी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई गाना तो ऐसा होता है जिस पे ऐसे पल की निशानी होते हैं जिसे हम दोबारा जी तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं।
0: तो क्यों ना शिवानी, हम भी कुछ म्यूजिकल ब्रेक महसूस करें और प्रोग्राम का ये पहला प्यारा सा गीत का एहसास लें।
1: बिल्कुल सलोनी, तो शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: सुनो जी, जब आप मुझे शादी करके लाए थे तब तो बोलते थे कि रानी बना के रखूंगा, कुछ काम नहीं कराऊंगा, कभी लड़ूंगा भी नहीं। अभी कोई ऐसा दिन जाता है जब आप मेरे से नहीं लड़ते? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा लड़ते हो।
5: ठीक है, तो तुम नहीं लड़ती हो मेरे से? मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूँ।
4: क्यों, मुझे मांगने?
5: अरे नहीं नहीं, ये बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है बाबा जी आपकी।
3: हाँ, मजा आ गया।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम में आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ खास है आज की, और आज तो वैसे भी बहुत खास दिन है शिवानी, क्योंकि आज है 14 जून यानी विश्व रक्तदान दिवस।
5: जी हाँ दोस्तों, किसी की धड़कनों को फिर रफ्तार मिल जाए अगर हमारे रक्त से किसी को जीवन का उपहार मिल जाए।
2: बिल्कुल सही, और सच भी यही है कि रक्तदान सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसालों में से एक है।
5: दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी मरीज को तुरंत ब्लड की जरूरत होती है, कभी एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों के लिए, कभी किसी ऑपरेशन के लिए, तो कभी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे

0: मरीज के लिए।
1: और ऐसे टाइम में हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है ब्लड डोनेशन के लिए, डोनर की, क्योंकि आज भी किसी का जो खून है वो खून बनाने का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। मतलब अगर रक्तदाता ना हो तो
0: तो कई मरीजों का इलाज मुश्किल हो सकता है।
1: यही वजह है कि रक्तदान को महादान भी समझा गया है।
0: इसलिए 14 जून को ये विशेष दिन मनाया जाता है।
1: और दोस्तों ये दिन मनाया जाता है वैज्ञानिक कर्ल लैंडस्टेनर की जयंती के अवसर पर।
0: इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था।
1: इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि स्वेच्छा से जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आते हैं उनके प्रति जागरूक करना और नियमित रक्तदाताओं का सम्मान करना।
0: जरा सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए, हॉस्पिटल का एक कमरा है और एक मरीज की जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी के अभी ब्लड की जरूरत है।
1: फैमिली परेशान, रिश्तेदारों को फोन किए जा रहे हैं, हर कोई मदद की कोशिश कर रहा है।
0: और तभी कोई ब्लड डोनर आगे आता है। कुछ मिनट में ही वो रक्तदान करता है, यानी रक्त देता है, और नई उम्मीद उससे मिल जाती है।
1: सोचिए उस परिवार के लिए वो इंसान किसी हीरो से कम तो नहीं होगा ना।
0: आज भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। ऐसे में युवाओं की ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
1: इसीलिए कॉलेज, स्कूल, सामाजिक संगठन और विभिन्न संस्थाओं ने समय समय पर रक्तदान कैंप आयोजित किए हैं और करती आ रही है।
0: ऐसे में युवाओं का भाग लेना समाज के प्रति उनसे उनकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।
1: दोस्तों क्यों ना आज के दिन हम भी एक संकल्प लें कि रक्तदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और अवसर मिलने पर ब्लड डोनेट जरूर करेंगे।
0: क्योंकि न कोई दौलत न कोई पहचान मांगता है, रक्तदान बस इंसानियत का सम्मान मांगता है। किसी की सांसों को नई उड़ान मिल जाए, आपके एक दान से किसी को जीवन दान मिल जाए।
1: और हमारे इस म्यूजिकल ब्रेक से आपके दिलों की धड़कन और भी तेज हो जाए, तो क्यों ना बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में गीत के साथ आगे।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट झलकी की ओर। तो देखते हैं आज हमारी झलकी आपसे क्या कहना।

0: माँ बस 1 मिनट आई।
1: ये बस 1 मिनट ना तुम्हारे बस मोबाइल में ही रहता है।
0: अरे नहीं नहीं मम्मी, अच्छा आ गई, बताओ क्या बात है। लड्डू तो काफी अच्छे हैं माँ। वाह कमाल है, ये तो मार्केट के लड्डू से भी अच्छे हैं माँ।
1: ऐसी भी कोई बात नहीं है, घर में तो हर माँ बना लेती है।
0: नहीं नहीं मम्मी, हर कोई नहीं बना सकता, आपके हाथों में तो सच में जादू है।
1: जादू वादू कुछ नहीं है, बस सालों का अनुभव है बस।
0: हाँ मम्मी, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है ना। मम्मी आपने कभी सोचा है कि आपका ये हुनर लोगों तक पहुंचे तो?
1: मेरे हुनर का क्या करना है, घर वालों को पसंद आ जाए बस वही बहुत है।
0: ओहो मेरी भोली मम्मी, यही तो दिक्कत है, आप हमेशा खुद को कम समझती हैं।
1: बेटा मेरी उम्र निकल गई, कौन पहचान देगा मुझे।
0: पहचान उम्र नहीं मम्मी, हुनर देती है।
1: बड़ी बड़ी बातें मत बना बस।
0: अरे मम्मी आपने वो बात नहीं सुनी क्या, एज इज जस्ट अ नंबर, आप ही कुछ करो ना। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, आप अच्छे से कर लोगी, एक बार ट्राई तो करो। मम्मी एक काम करो, आप ना सोशल मीडिया पर कुछ ट्राई करो।
1: अरे बेटा तेरा ये सोशल मीडिया मुझे समझ में नहीं आता, दिन भर बस इस पर लोग फोटो ही डालते रहते हैं।
0: अरे मम्मी ये सोशल मीडिया फोटो ही डालने के लिए थोड़ी होता है।
1: तो और क्या करते हैं इसमें।
0: मम्मी देखो मैं आपको बताती हूँ, आप बैठो पहले। देखो मम्मी कोई पढ़ाता है, कोई गाना सिखाता है, कोई अपनी आर्ट्स दिखाता है, और कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाता है।
1: अच्छा
0: और कई लोग तो मम्मी घर बैठे अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, और पैसा ही पैसा।
1: अरे रिया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता।
0: अरे मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हो, आपको तो सीखना भी नहीं है, आपकी ये हुनरबाज बेटी जो आपके साथ है, बस आप अपना हुनर दिखाना मत भूलिएगा। मम्मी एक काम करते हैं हम ना, आपकी ये जो वीडियो है ना, रेसिपी बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं।
1: नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे इस कैमरे के सामने नहीं जा सकती।
0: अरे नहीं मम्मी मैं तो बोलती हूँ आप ना अभी ट्राई करो, वो बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, तो हम एक छोटी सी वीडियो अभी बनाते हैं मम्मी।
1: क्या कहेंगे लोग और हंसेंगे मुझ पर।
0: अरे मम्मी चार लोग क्या कहेंगे ये सोचने बैठोगी तो आप तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगी। माँ लोग उन पर हंसते हैं जो कोशिश नहीं करते, और जो कोशिश करते हैं मेहनत करते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं।
1: फिर भी ना मुझे डर लग रहा है।
0: ओहो मेरे डर की पुजारन, एक बार सुनो तो सही, मैं हूं ना आपके साथ, बस आप मेरे पीछे पीछे करते जाओ, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूं, 3 2 1। मम्मी
1: नहीं
0: बोलो मैं हूं ना साथ आपके। मम्मी जैसे ये जो बनाती हो रेसिपी, बस आपको बताना है जैसे कि हम ये डाल रहे हैं, ये बना रहे हैं, और बस शुरू में बोलना है नमस्ते दोस्तों, और फिर बस आराम से वीडियो बनानी है, ठीक
1: नहीं
0: है।
1: बेटा मेरे से नहीं होगा।
0: मम्मी नहीं मैं आपकी बात सुनती हूँ ना हमेशा, अब आप सुनो, मैं शुरू कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, 3 2 1 एक्शन।
1: नमस्ते, मैं सीमा हूं। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाने की आसान विधि बताऊंगी।
0: बस मम्मी हो गया ना, देखो कितना आसान था।
1: इतना ही।
0: हाँ बाबा हाँ इतना ही, अब इसे पोस्ट करते हैं। मम्मी मम्मी कहाँ हो, अरे रसोई में ही रहोगी क्या, मम्मी जल्दी इधर आओ।
1: क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है तू।
0: अरे मेरी सेलिब्रिटी मम्मी, आपका तो वीडियो वायरल हो गया यार, क्या कमाल की रेसिपी डाली आपने, व्यूज इतने आए हैं ना मम्मी, इतने लाइक्स तो मेरी वीडियो पर भी नहीं आए मम्मी अभी तक।
1: वायरल? अरे बेटा मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है।
0: ए भगवान मेरी भोली मम्मी, मम्मी सोशल मीडिया वाला वायरल
1: मतलब
0: मतलब आपकी वीडियो इतने लोगों ने देखी है, इतनी शेयर हुई है, इतने लाइक्स आए हैं ना, बस पूछो मत।
1: क्या?
0: और ये देखो कमेंट्स, सीमा जी आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, सीमा जी आपके मसाले लाजवाब हैं, सीमा जी आपकी आवाज में अपनापन है, ऐसी और रेसिपी डालिए ना सीमा जी।
1: सच में बेटा लोगों को पसंद आया।
0: हाँ मम्मी बहुत पसंद आया, आपके जो खाने में स्वाद था उसमें अपनापन था।
1: रिया वैसे मैं तुझे बेटा बताने वाली थी, आज पड़ोस के शर्मा जी मिली थी, वो कह रही थी बेटा कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा है
0: अरे वाह मतलब उन्होंने भी देखा, देखा मम्मी देखा ना,
1: और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी भेजा है।
0: देखा, आप तो वायरल हो रही हो, आपकी तो पहचान फैलती जा रही है मम्मी।
1: बेटा पहले सिर्फ मैं ना घर की चार दीवारों तक ही सीमित थी।
0: और अब तो आपके लिए खुला आसमान है, क्यों मम्मी।
1: बेटा मुझे लगता है कि मेरी मेहनत और अनुभव की भी एक कीमत है। रिया तेरे से एक बात पूछूं।
0: अरे हाँ।

0: मम्मी आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आप तो जो पूछना है पूछो।
1: क्या ये तेरा सोशल मीडिया हमेशा इतना अच्छा होता है?
0: नहीं
1: मतलब
0: मतलब मम्मी, अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर करेंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, दूसरों की कंपैरिजन में अपने आप को कम समझेंगे या दूसरों को नीचा दिखाएंगे, तो पूरा दिन उसी में खो जाएंगे, तो नुकसान तो होगा ही ना मम्मी।
1: और सही उपयोग से बेटा,
0: मम्मी, इसके सही यूज़ से हमें सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा, लोगों की हेल्प करने को मिलेगी, अपने टैलेंट को पहचान मिलेगी, और यही सारे सही इसके यूज़ हैं।
1: अब समझ आया बेटा ये तेरा सोशल मीडिया क्या है। हेलो, क्या मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है
0: मम्मी, कौन था फोन पर?
1: बेटा, वो शहर की महिला उद्यमी सम्मेलन से फोन था।
0: सच में मम्मी?
1: हाँ बेटा, वो चाहते हैं कि मैं दूसरी महिलाओं को अपने अनुभव बताऊं।
0: अरे वाह मम्मी, देखा, मैंने कहा था ना कि आपका हुनर दुनिया तक एक दिन जरूर पहुंचेगा, तो वो दिन आ गया है।
1: रिया, पहले मुझे लगता था कि सोशल मीडिया सिर्फ समय बर्बाद करता है।
0: और अब मम्मी,
1: आप समझ आया कि सोशल मीडिया एक साधन है बेटा, इसका सही उपयोग हम करेंगे तो हमें एक नई पहचान मिल सकती है।
0: तो मम्मी एक रील क्यों ना आज अपने दोस्तों के लिए ही डाल दें? 3 2 1
1: दोस्तों,
0: दोस्तों,
1: सोशल मीडिया का सही उपयोग करें,
0: अपनी प्रतिभा को नई उड़ान दें,
1: समय बर्बाद नहीं,
0: अवसर के लिए तैयार करें।
1: क्योंकि एक क्लिक बदल सकता है आपकी पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा हमारी आज की झलकी ने कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस नजरिए की बात होती है, हमें उसे किस पॉजिटिव वे में लेना है। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बिल्कुल एक सादी किताब सी लगती है, फिर अचानक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उस किताब के हर पन्ने को खूबसूरत बना देता है। एक छोटी सी मुलाकात, कुछ प्यारी सी बातें, और देखते ही देखते वही इंसान हमारी मुस्कुराहट की वजह बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमारी अधूरी कहानी में सबसे खूबसूरत किरदार जोड़ दिया है। इन्हीं जज्बातों को शब्द और सुरों में पिरोया गया है इस शानदार गीत में। तो दोस्तों, दिल की धड़कनों को थोड़ा और करीब से महसूस कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे
3: और जाओगे हंस-हंस कर लौट को,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: मम्मी मम्मी क्या कर रही हो, कितना काम करती हो तुम?
5: क्या हुआ मेरे बेटा?
4: मम्मी मुझसे ना आपको काम करते हुए देखा नहीं जाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपके लिए ना एक नौकरानी रखूंगा।
5: अच्छा बेटा।
4: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं आपको एक कार दिलाऊंगा।
5: ओ मेरे बेटे।
4: जब मम्मी मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं एक एसी भी लगवाऊंगा। मैं ना आईएएस ऑफिसर बनूंगा मम्मी, और फिर तुम ना गाड़ी में घूमना।
5: हाय मेरा बेटा मेरे लिए कितना सोचता है, बड़ा प्यारा बेटा है मेरा तो।
4: बस मेरी प्यारी मम्मी होगी ना, बस आप ना अभी के लिए अपने इस प्यारे से, इस मासूम से बच्चे को 10 रुपए दे दो ना। बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है।
3: मजा आ गया।
6: दोस्तों कहते हैं जब मोहब्बत दिल में उतर जाए तो अल्फाज खुद ब खुद शायरी बन जाते हैं। प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास है जो जिंदगी को नए रंग दे देता है। कभी किसी की मुस्कान में खुशी मिलती है तो कभी किसी की यादों में पूरी रात गुजर जाती है। तो अगर आपके दिल में भी किसी खास इंसान का नाम बसता है, अगर कोई आपकी हर कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार है, तो ये अगला गीत आप ही के लिए है।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बता सकते हैं अपने खत के जरिए। और खत लिखने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आप अपनी कॉपी और पेन उठा दीजिए और लिख लीजिए हमारा एड्रेस। हमारा एड्रेस है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: दोस्तों इतना ही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी तो फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, जिस पर आपको हाल ही में बहुत अच्छी अच्छी और नई नई पोस्ट देखने को मिल रही होंगी। और इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारी पुरानी प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं, जैसा कि शिवानी ने बताया। और आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अपनी साथी सलोनी
0: और शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भाई देखो पिछले भी 2-3 दिन पहले देखो आंधी तूफान के साथ बारिश ठीक ठाक हो गई। जिन भाइयों ने हमारे अपनी फसलों में सिंचाई कर रखी थी तो भाई देखो उनका तो बढ़िया काम हो गया। दूसरे भाई जो सिंचाई करने की सोच रहे थे तो भाई देखो उनका भी 2-4 दिन का तो काम चल ही गया। 2-4 दिन के लिए तो सिंचाई बढ़िया हो गई हमारे किसान भाइयों की। और भाई इस समय खेतों में नमी भी बढ़िया है तो भाई जिन खेतों में हमारे किसान भाइयों के इस समय फसल के साथ साथ भैया खरपतवार हों तो भाई वो खरपतवार का उन्मूलन कर दें, यानी कि खरपतवारों का नियंत्रण करा लें इस समय से। चाहे भाई आप किसी खरपतवार नाशी का स्प्रे करें अपने खेतों में या भैया हाथों से फावड़े से निकाई गुड़ाई करवाएं, तो भाई आप अपनी फसलों में समय से यदि खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं तो भाई हमारा जो उत्पादन है ना वो बहुत हद तक खरपतवारों पर निर्भर करता है। भाई हम अपनी फसल को जब उर्वरक देते हैं तो भैया वो जो है खरपतवार हमारी फसल से पहले ग्रहण कर लेते हैं, तो भाई इस तरह से हमारा जो फसल का उत्पादन है वो भैया खरपतवारों के द्वारा भैया घट जाता है। यदि खरपतवार खेत में नहीं होने के तो भैया हमारे खेत का जो उत्पादन है हमारी फसल का वो हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलेगा। खैर भाई हमारे किसान भाई जागरूक हैं और साथ ही साथ भैया अपनी फसलों में वो लगे हुए हैं, चाहे भैया स्प्रे का काम हो या भैया कीटनाशियों का प्रयोग हो या अन्य कोई भैया कार्य खेतों में अपने करना है। क्योंकि भाई देखो खरीफ का मौसम धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों के करीब है। हमारे किसान भाइयों ने नर्सरी धान की फसल की तैयार कर ली है और बस खेत तैयारी करके हमारे किसान भाई अपने खेतों में भैया धान की फसल की रोपाई करेंगे। तो भाई रोपाई करने से पहले कुछ बातें हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने खेत को भैया समतल करा लें यदि खेत समतल ना हो तो। दूसरे भाई यदि समतल हमारा खेत है तो बहुत अच्छी बात है भाई, चारों तरफ की आप अपने खेतों की मेड़बंदी कर लें। क्योंकि भाई आने वाला सीजन बरसात का है और बरसात के सीजन में भैया हमारे किसान भाई यदि मेड़बंदी कर लेंगे तो जो वर्षा का पानी है भैया वो हमारे खेत में उसका संचयन हो जाएगा। जब वर्षा का पानी का संचयन हो जाएगा तो भाई हमारे खेतों को सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी। ऐसा हो है भाई बारिश पड़ी हमारी मेड़बंदी है नहीं हमारे खेतों की, भाई खेत का पानी सारा का सारा दूसरे खेत में निकल गया, तो भाई इस तरह से हमारे खेत में पानी रुका ही नहीं तो भैया हमारे खेत में नमी कम दिनों तक रहती है और भैया हमारी फसल को जो खरीफ की फसल है उसे पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो इस समय को देखते हुए भैया और आपके पास अभी समय भी अच्छा है, आप समय को देखते हुए अपने कृषि कार्य भैया पूर्ण कर लें। और भाई अब देखो एक आज विशेष दिन है, वैसे तो भाई विशेष दिन सारे ही होते हैं लेकिन भाई आज है विश्व रक्तदाता दिवस। भाई विश्व रक्तदाता दिवस के दिन यानी कि आज 14 जून को ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। भाई ये विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के महत्व के बारे में किसान भाइयों को हमारे नौजवान साथियों को जागरूक करना या जागरूकता फैलाना होता है। किसान भाइयों रक्त यानी कि खून मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत ही आवश्यक होता है और भाई इसका आज तक कोई ऐसा कृत्रिम विकल्प नहीं है कि भाई खून यदि शरीर में ना चढ़ाया जावे या खून की कमी हो शरीर में तो किसी और चीज से और चीज को चढ़ा के खेप शरीर में या किसी के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जावे। भाई ऐसा कोई इसका विकल्प आज तक नहीं है, भाई खून भी बढ़ाया ही जा सकता है और खून चढ़ा के ही आदमी का काम किया जा सकता है। तो इस तरह से भैया इस कार्य को भैया विश्व रक्तदाता दिवस को भैया हम जो है बड़ी ही गंभीरता से लेना चाहिए और भाई हमारा दान भाई किसी की जिंदगी बचा सकता है। भाइयों देखो दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल या बीमारियों में ऑपरेशन में या भैया जो हमारी माताएं बहनें बच्चों को जन्म देती हैं प्रसव में काफ़ी खून की हानि होती है तो भाई या अन्य कोई चिकित्सा परिस्थितियों में भाई हमारे जो रोगी होते हैं उनका भैया जीवन बचाने के लिए खून की कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो भाई विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में की गई थी। इस दिन का चयन कॉर्लैंड स्टेनर के जन्मदिन के सम्मान के रूप में किया जाता है। भाइयों जिन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी। भाइयों रक्तदान एक महान सामाजिक और मानवीय कार्य है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त कई लोगों की जान बचा सकता है। किसान भाइयों देखो, रक्तदान एक महादान है, रक्तदान हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए। भाई हो सकता है हमारे खून से कितनी जिंदगी बच जाए, तो भाई वे हम जो हो दुआएं देती हैं, तो भाई इस तरह से हम जो है रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो भाई ये तो थी कुछ जानकारी विश्व रक्तदाता दिवस की। भाई अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के,

0: या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के
2: सके हैं। तो भाई उच्च मूल्य वाली फसलों को हम अपने खेत में उगाना है भाई। देखो जो खेती किसानी है वो भैया हमारे देश की रीढ़ है। और भाइयों आज बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए हमारा उत्पादन अधिक हो और भाई हमारी जो पैदावार है वो भैया बढ़े, ताकि भैया पूरे देश को भोजन मुहैया हो सके। भाई अधिक पैदावार करने की भैया आज के समय में पारंपरिक खेती पर निर्भर रहकर तो भाई हो नहीं सकता। भाई पारंपरिक खेती अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है। भाई बढ़ती लागत और बदलते बाजार के कारण किसानों को आधुनिक तकनीकों और नए कृषि तरीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है। तो भाई आज देखो हमारे किसान भाई कृषि यंत्रीकरण पा गए हैं, साथ ही साथ भाई हमारे किसान भाई जो है अधिक उर्वरकों का खर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई हम काम क्या करना, भाई काम हमें ऐसा करना है कि भाई फसल विविधीकरण अपनाना, भाई एक साथ एक फसल पर निर्भर हमें नहीं रहना है। हम भैया अपने खेत में कई फसलें उगानी है, यानी कि भैया यदि गन्ना हमने उगा रखा मुख्य फसल के रूप में, तो भाई उसके जो लाइनों के बीच में खाली स्थान है उसमें भैया सब्जी उगा लें, जैसे भैया धनिया उगा लें, टमाटर उगा लें, मिर्च उगा लें, और भाई हो सके तो मसालेदार उगा लें जैसे हल्दी हो या भैया अन्य कोई औषधीय पौधे लगा लें, ताकि आपको भैया गन्ने के साथ साथ समय अनुसार उत्पादन मिल सके और भैया आपकी आमदनी पर्याप्त चलती रहे। दूसरे भाई इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, भाई देखो लागत तो हमारे किसान भाइयों की जो गन्ने में लगा रहे हैं वही लागत लग जाएगी, लेकिन भाई जोखिम हमारे किसान भाइयों का कम हो जाएगा। भाई यदि कोई ऐसा खर्चा बढ़ता है हमारे किसान भाइयों का कि भाई गन्ने से पूर्ति नहीं होती, तो भाई जो हमने अंतर्वर्ती फसलें लगा रखी हैं, सह फसल लगा रखी है, भाई उससे हमारी प्रतिपूर्ति हो जाएगी, भाई हमारे किसान भाइयों का साल भर आय चलती रहेगी। तो भाई इस तरह से आप जो है फसल विविधीकरण अपनाएं। दूसरे भाई आज हम जब पानी अपने खेत में अपनी फसल में लगाना जा वहाँ हाँ, तो भाई हमारे किसान भाई क्या काम करें कि भैया खुला पानी चला दें, भाई इससे जो है जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और भैया इस जल के दोहन से हमारे किसान भाइयों का समय तो लग ही रहा, दूसरे भाई खर्चा हमारे किसान भाइयों का अधिक बढ़ रहा है। भाई जितना अधिक पानी हम फसलों को दे रहे हैं भाई उतने पानी की आवश्यकता हमारी फसलों को नहीं होती है, हमारी फसलों को तो भैया नमी की आवश्यकता होती है। तो भाई नमी हमारे खेतों में किस तरह से बनी रहेगी, आज भैया आधुनिक सिंचाई की तकनीक चल रही है, जैसे भैया ड्रिप इरीगेशन है या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है, जिस पर भैया सरकार भी काफी अनुदान हमारे किसान भाइयों को दे रही है यदि वो अपने खेतों में लगवाओ, तो भैया इस योजना का आप लाभ उठाएं, ड्रिप इरिगेशन लगवाएं, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि अपने खेतों में लगवाओ, ताकि भैया आपको पानी के साथ साथ आपका खर्च भी कम हो, भैया बचत आपको अधिक हो और साथ ही साथ पानी हमारे किसान भाइयों का बच सके, क्योंकि भाई जल है तो जीवन है, भाई जल के बिना कोई सा भी काम संभव नहीं है। तो भाई इस तरह से आप जो है अपनी खेती किसानी में भैया अंधाधुंध जल का प्रयोग ना करें। दूसरे भाई आजकल हमारे किसान भाई अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग जो कर रहे हैं वो भैया देखभाल कर नहीं कर रहे हैं, भाई बराबर वाले ने एक कट्टा डाला तो भाई हमारे किसान भाई सोचे ना यार इससे तकड़ी फसल करनी है तो भैया डेढ़ कट्टा डालने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ऐसा हमें नहीं करना। भाई डेढ़ कट्टा खाद डालने से हमारी जो उपज है वो नहीं बढ़ती, भाई लगभग जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो ये बताते हैं कि हमारी फसल जब हम उर्वरकों को उल्टा सीधा खेत में बखेरे हैं तो भाई हमारी फसल जो है 30% उर्वरक, यानी कि अगर हमने 100 किलो उर्वरक अपने खेत में डाला तो भैया 30 किलो ही उर्वरक फसल प्रयोग कर रहा है और भाई 70 किलो यूरिया या 70 किलो खाद जो हम डाल रहे हैं वो भैया वेस्ट जाता है, या तो जमीन में लीच कर जाता है या भैया वायुमंडल में धूप के कारण उड़ जाता है। तो भाई इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरे भाई एक बात और थोड़ी सी हम किसान भाइयों को यहाँ जागरूकता की दृष्टि से बता दें कि भाई जब भी आप उर्वरक भैया अपने खेतों में डालना तो भाई 11 बजे के बाद, यानी कि दिन में सुबह को 11 बजे के बाद और भैया 3 बजे के बीच में ना डालना। भाई इससे जो है एक चीज होती है कि सूर्य की गर्मी यानी कि धूप ज्यादा होती है, जिससे भैया जो हम उर्वरक डाल लेंगे खेत में तो भाई वो गर्मी के कारण पिघल कर भैया वायुमंडल में चला जाता है, तो इस तरह से आप जो है सावधानी बरतें। दूसरे भाई हमें क्या काम करना, अपने खेतों में दलहनी फसलों का प्रयोग करना, यानी कि फसल चक्र अपनाना है और फसल चक्र अपना

यानी भैया एक साल में जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसमें भैया दलहनी फसलों का समावेश अवश्य कर लें, चाहे उड़द हो, मूंग हो, अरहर हो या अन्य कोई दलहनी फसल हो। भाई उनका प्रयोग हम करने को क्यों कह रहे हैं या बोने को क्यों कह रहे हैं? भाई ये कारण यो है कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों की जड़ों में करते रहते हैं। और भाई जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो भैया अपनी साथ साथ भैया जो अन्य फसल हम लगाते हैं खेत में अगली फसल, भाई उसके लिए कुछ ना कुछ उर्वरक, कुछ ना कुछ अवशेष हमारे खेत में छोड़ कर जाती है, यानी कि हमारे खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। तो भाई दलहनी फसलों का समावेश हमें इसलिए भी करना चाहिए। और भाई हो सके तो भाई आज हम देख रहे हैं कि भैया अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि भाई जगह हाथ नहीं आ रही। यदि आप भैया जैविक खेती या प्राकृतिक खेती अपना में तो भाई इससे जो है आपका जो उत्पाद है भैया उसकी मांग बढ़ेगी, बाजार मूल्य अधिक मिलेगा और साथ ही साथ भैया आपकी लागत भी कम होगी। भाई जो हम सीधे बाजार में अपना जो उपज है वो बेचे हैं तो भाई बिचौलियों से आप बचें, सीधे भैया ग्राहक को यदि आप बेचोगे तो आपको मुनाफा अधिक होगा। यदि हम बिचौलियों के चक्कर में फंस गए, गांव में ही याद मान लो हमने बेच दी किसी बिचौलिया को, उसने बेची मंडी में ले जाकर, तो भाई उससे जो है अधिक लाभ होता है और हमारे किसान भाइयों को लाभ इतना नहीं हो पाता है। तो आप जो है सीधे मंडी से जुड़े, बिचौलियों से बचें। भाई दूसरे यदि आपका जो उत्पादन है, चाहे भाई किसी भी फसल का उत्पादन हो, भाई उसका आप प्रसंस्करण कर दें यानी कि पैकेजिंग कर दें तो भाई उससे बढ़िया तो बात ही नहीं। कच्चा माल बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण यानी कि उसका पैकिंग, जैसे कि भैया गेहूं है हमारा, गेहूं का यदि हम आटा बना लें तो और उसका पैकिंग करके आप जो है बाजारों में बेचते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। दूसरे भाई सरसों है, सरसों यदि हम बाजार में बेचने के बजाय उसका तेल बेचते हैं तो हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिलेगा, अब पशुओं के लिए उसकी खल भी बच जाएगी। दूसरे भाई दूध की जगह दही या पनीर बना के बेचें तो भाई देखो काफ़ी तरह काफ़ी फायदे हमारे किसान भाइयों को छोटी छोटी चीज़ों से हो जाते हैं इस तरह से। और दूसरे भाई यदि आप खेती के साथ पशुपालन से जुड़ा, भाई देखो खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और पशु जो है हमारी खेती से भैया पहले से ही जुड़े हुए हैं। भाई पशुओं के लिए खेती यदि हम कर रहे हैं तो अलग से कोई भी चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारे खेतों से हमारी फसलों से ही उनका भरण पोषण होता रहता है और भाई वो जो है हम समय से दूध देख कर हमारी आमदनी में चार चांद लगाते रहते हैं। और यदि पशुओं से भैया हम डेयरी फार्मिंग कर लें या बकरी पालन कर लें, मुर्गी पालन कर लें या मछली पालन कर लें तो इस तरह से भैया हमारी आय का स्रोत बन जाता है। तो इस तरह से आप भैया अपनी खेती को भैया अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और एक व्यवसायिक तौर से खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो भाई देखो ये तो कुछ बातचीत हो गई खेती से अधिक मुनाफा कमाने के आधुनिक तरीकों की, अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये प्रोमो।

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: भाइयों, प्रोमो के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का। और भाई देखो, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भाई हम देखो कार्यक्रम में शुरुआत में ही बात कर रहे थे भैया दलहनी फसलों की, और भाई खरीफ का सीजन चल रहा है। जैसा कि हमारे सभी किसान बहन भाई जानते हैं कि उन्होंने धान की नर्सरी कर दी, और दूसरे भैया जिन भाइयों ने दलहन की फसल लगानी है भैया वो भी लगा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि दलहन में भैया इस समय उड़द मूंग हमारे किसान भाई लगाते हैं, और भाई उड़द मूंग की खेती करके हमारे किसान भाई अपने खेतों को उपजाऊ बना सकें। देखो दलहन की फसल यदि हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनकी लागत भैया बिल्कुल जो है नगण्य होती है, यानी कि दलहन की फसल ना तो अधिक पानी मांग, ना अधिक उर्वरक हमारे किसान भाइयों को देना, और ना भैया खेत की तैयारी में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा लागत लगानी। भाई क्या काम करना, एक दो जुताई करिए अपने खेत की भैया, और उसके बाद भैया उसे पाट्टा लगाकर समतल करके, और भैया अपने खेत में चाहे उड़द हो चाहे मूंग हो वो भैया आपने लाइनों में बो दिया, और लाइनों में बो कर और भैया आपने छोड़ दिया, पानी देने की आपको आवश्यकता है नहीं। भाई हो सके अगर ज़्यादा ही बारिश ना पड़ी या सिंचाई भैया करनी भी पड़ रही है तो हल्की सी सिंचाई, एक जैसे कह दें ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई जैसा बोछारा विधि हो, भाई इस तरह से यदि एक सिंचाई देनी पड़ गई तो सिंचाई कर दो एक हल्की सी। भाई इस तरह से आप जो है खरीफ में दलहन की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो भाई एक ऐसी ही जानकारी आज हम अपने किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है खरीफ में दलहन की उन्नत खेती। भाई जानकारी दे रहे हैं श्री हरिंदर कुमार सैनी, जो कि सहायक विकास अधिकारी हैं ब्लॉक कोतवा किरतपुर में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम पहुंचे ब्लॉक किरतपुर जनपद बिजनौर में, और हमने आज बात की श्री हरिंदर कुमार सैनी जी से, जो कि सहायक विकास अधिकारी हैं कृषि में। जानकारी का विषय है खरीफ में दलहन की उन्नत खेती का। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: सर। जैसा कि आज हमारा विषय भी है कि खरीफ में दलहन की उन्नत खेती के संबंध में, तो सर सबसे पहले हम हमारे किसान भाइयों को आप यही जानकारी दीजिए कि खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं।
4: उड़द मूंग अरहर और लोबिया, ये हमारे यहाँ की प्रमुख क्षेत्र की फसलें हैं।
3: अच्छा सर, ये जो है हमारी उड़द मूंग की जो फसलें हैं ये हमारे यहाँ खरीफ में बहुत अच्छी तरह से उगाई जाती हैं। अच्छा सर, जैसा कि विषय है कि खरीफ की दलहनी फसलों का, तो खरीफ की दलहनी फसलों की उन्नत खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी फसल का उत्पादन हमें अच्छा लेना है तो सबसे पहले आती है बात समय की, किस समय पर हम खेत की बुआई कर रहे हैं, और दूसरा जलवायु कैसी है। तो इस संबंध में थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए ताकि हमारे किसान भाई समय से अपनी फसल का उत्पादन लेकर अच्छा लाभ कमा सकें।
4: मैं ये कहूँगा कि खरीफ की फसलों में जो दलहन की फसलें हैं उनकी जलवायु है ना, उष्ण जलवायु जो बिजनौर के लिए बहुत उपयुक्त है खरीफ फसलों के लिए,
3: बिल्कुल
4: 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे करनी चाहिए, और उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है कि जो जोते वाली पानी मांगते हैं ये कम पानी मांगती है
3: जी।
4: और बुआई का समय जो जून और जुलाई बहुत अच्छा समय चल रहा है।
3: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को हमारे किसान भाइयों को दी कि किस तरह की जलवायु होनी चाहिए और कौन सा समय जो है दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, किस समय हमें बुआई करनी चाहिए। खरीफ मौसम की जो दलहनी फसलों के लिए बीज दर की यदि हम बात करें, क्योंकि बुआई में बीज दर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो बीज दर और बुआई की उचित विधि क्या है, इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को जागरूक कीजिए।
4: मैं मूंग पे बात करता हूँ। मूंग की जो वैरायटी है पीडीएम 139 वैरायटी है, और उसकी जो बीज दर है 1 किलो प्रति बीघा या 15 किलो प्रति हेक्टर के दर से लगती है
3: जी।
4: वो ऐसी उड़द की पीयू कत्ती वैरायटी बहुत अच्छी है, इसकी बीज दर 1 किलो प्रति बीघा और 15 किलो प्रति हेक्टर लगती है
3: जी।
4: और अरहर की वैरायटी उपवास है 120, और इसकी जो बीज दर है वो 10 किलो प्रति हेक्टेयर किधर से लगती है?
3: बिल्कुल सर, हमारे किसान भाई हेक्टेयर कम समझते हैं, बिघो की जानकारी यदि आप दें तो बहुत अच्छी बात है।
4: ये मैं कहूँगा कि उड़द की लगती है 1 किलो प्रति बीघा और मूंग की 1 किलो प्रति बीघा और अरहर की 800 ग्राम प्रति बीघा।
3: बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, वैसे तो सभी जानते हैं कि हेक्टेयर और बीघे क्या होते हैं, लेकिन बीघे की यदि हमें जानकारी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छा सर, जैसा हम बात कर रहे हैं कि खरीफ मौसम की फसलों की, तो सर खरीफ मौसम में भी दलहनी फसलों का, जैसा कि आपने बताया कि बुआई का समय क्या है और विधि के संबंध में हम बात करेंगे, तो कौन सी विधि से हमें बुआई करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी किस तरह से रखनी चाहिए?
4: खरीफ की फसलों में हमें लाइन से लाइन की बुआई करनी चाहिए, जिससे हमें काश खरपतवार नियंत्रण करने में कोई दिक्कत ना हो और खरपतवार आसानी से नष्ट किया जा सके। और कतार से कतार दूरी 30 से और 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से हमें दूरी अपनी मेंटेन करनी चाहिए कि कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छा सर, जैसा कोई सी भी फसल हम लगाते हैं तो उसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उर्वरकों की आवश्यकता होती है, तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हमारे किसान भाई किस तरह से अपनी खरीफ मौसम में दलहनी फसलों में करें?
4: उर्वरक 15 की बात करो तो 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें
3: जी,
4: और इन फसलों में एनपीए की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए फास्फेट पोटास का प्रयोग अधिक करें।
3: जी जी जी बिल्कुल,
4: और मिट्टी के जांच के अनुसार ही खेत में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। और मैं कहूंगा कि घास पतवार के लिए 20-25 दिन बाद उसकी निकाई गुड़ाई

0: देनी चाहिए हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा खरपतवारों की बात आप कर रहे हो सर, हम जो है खरपतवारों की ओर चलते हैं, तो दलहनी फसलों में खरपतवार प्रबंधन की जब आपने बात की है, तो किस तरह से खरपतवार प्रबंधन हमारे किसान भाई करें?
1: हमें 20-25 दिन बाद उसकी निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए,
0: जी
1: और कुछ दवा आती है वे दवा का ना कम से कम प्रयोग करें, हम एक ही
0: बिल्कुल
1: हाथ से नियंत्रण कर लेना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें जो है मैनुअल जो है खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, और साथ ही साथ जो दवाई आती है खरपतवार नियंत्रण की, उनका प्रयोग हमें कम ही करना चाहिए। अच्छा सर, जैसा खरीफ दलहनी फसलें होती हैं, हमारे भाइयों की आय किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से वो हमारे किसान भाइयों की आय पर प्रभाव डालती हैं, इस संबंध में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप जागरूक कीजिए।
1: मैं कहूंगा कि खरीफ की दलहनी फसलों के लिए आय बढ़ाने के लिए उसे समय से बुआई करे
0: जी
1: और उसकी बीज दर ठीक रखे और समय से उसके रोग और कीट को नियंत्रण रखे और समय समय पर खेत की देखते रहे, खेत पे जाकर देखते रहे कि कोई रोग कीट तो नहीं लगा उस पर, समय उसके नियंत्रण करते रहे, इससे
0: जी
1: हमारी पैदावार अच्छी हो सके।
0: जी
1: और जो हमारी दलहन फसलें हैं वे वायुमंडल से नाइट्रोजन की पूर्ति करती है,
0: जी
1: वे आने वाली फसलें जो बोती है उनके लिए कुछ कुछ छोड़ देती है,
0: बिल्कुल सर,
1: जो आने
0: बिल्कुल
1: वाले फसल के लिए पैदावार के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि यदि हम दलहनी फसलें अपने खेतों में लगाते हैं, तो हमारे खेतों में दलहनी फसलें कुछ ना कुछ अवशेष के रूप में चाहे नाइट्रोजन छोड़ जाती हैं, जो उर्वरक होता है, तो नाइट्रोजन की जैसी बात आती है सर इसमें दलहनी फसलों में, तो ये जो है दलहनी फसलों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या कारण है?
1: ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है
0: जी
1: तो उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है,
0: अच्छा
1: जिसे हमारे के जमीन के अंदर ये नाइट्रोजन पूर्ति करता है।
0: जी,
1: और इसके लिए हम है ना हमारे सरकारी बीज गोदाम पर भी और इसमें राइजोबियम में कल्चर भी आते हैं, वे भी हम बीज में लगाकर ला सकते हैं कि जिससे और अच्छी और उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ सकती है।
0: अच्छा सर, आपके गोदाम पर जो आपके कृषि विभाग के गोदाम होते हैं, उन पर जो है राइजोबियम कल्चर मिलता है, और उसको हमारे किसान भाई किस तरह से प्रयोग करें?
1: उसे बीज ट्रीट करने में सब प्रयोग कर सकते हैं हम।
0: जी, बिल्कुल। बीज ट्रीट करने में हमारे किसान भाई राइजोबियम का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन अपनी दलहनी फसलों से ले सकते हैं, चाहे फसल आपकी उड़द की हो, मूंग की हो, अरहर की हो। अच्छा सर, जैसा आज हम देखते हैं कि मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो खरीफ मौसम की जो फसलें होती हैं दलहन की, वो मौसम का प्रभाव उन पर किस तरह से पड़ता है, इस संबंध में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जागरूक कीजिए, और वो किस तरह से हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकें?
1: देखिए आजकल मौसम बढ़ रहा है, बहुत अधिक टेम्परेचर हो रहा है, तो फिर रोग बढ़ने की क्षमता अधिक होती है,
0: जी
1: उसमें उबटा रोग लग जाएगा कि अन्य रोग अधिक फैलते हैं और कीड़ों का प्रकोप अधिक हो जाएगा।
0: जी
1: मैं कहूँगा उसे जैविक नियंत्रण करके उसे कंट्रोल करता है, इसलिए हमारे जैसे कि इसमें अगर उसमें कोई कीट आता है तो जो हमारे कीट लगते हैं उसके लिए हम ग्लू टैप कार्ड का यूज प्रयोग कर सकते हैं हम, जब
0: जी
1: माहू चेपे के लिए, अन्य सफेद मक्खी के लिए, और हम ट्राइकोडर्मा और बेबेरा बेशाना का भी हम प्रयोग कर सकते हैं उसमें।
0: अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अच्छा, जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन हमारे किसान भाई किस तरह से देखें?
1: समय समय से अपनी सेवा करते रहे उसकी और उसकी तरह से अपने खेत में भ्रमण करते रहे।
0: जैसा आपने बताया कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से आप अपनी जो दलहनी फसलें होती हैं उनका बचाव कर सकते हैं मौसम को देखते हुए। अच्छा सर, हम जब उन्नत खेती का उत्पादन करते हैं या फसलें लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ कीट बीमारियां हमारी फसल में आवश्यक रूप से लगती हैं, तो कौन कौन सी कीट हमारी फसल में लगते हैं, और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, और किस तरह से हमारे किसान भाई उनका निदान कर सकते हैं?
1: खरीफ की फसलों में फली छेदक माहू और सफेद मक्खी कीट लगते हैं और पीला मोजाक और उबटा रोग लगता है।
0: अच्छा
1: और सफेद मक्खी के लिए और माहू के लिए हम उसे नीम का तेल का प्रयोग करें तो
0: जी
1: बहुत अच्छा रहेगा। पीला मोजाक के लिए भी हम नीम का तेल प्रयोग करें, उबटा रोग के लिए हम बीज को ट्रीट करके बो सकते हैं।
0: जी जी जी कोई अन्य इनका नियंत्रण है कि बुआई करते समय हमारे किसान भाइयों ने उपचार बीज का नहीं किया है, या बीज ट्रीटमेंट करके नहीं बोया है, तो उकटा रोग या पीला मोजेक रोग किस तरह से रोक सकते हैं?
1: उकटा रोग को तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं हम, सफेद मक्खी के लिए, मऊ के लिए हम नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसा कि हम आज दलहनी फसलों का विषय भी हमारा है, और हमारे किसान भाइयों के लिए दलहनी फसलें होती हैं वो हमारे किसान भाइयों के खेतों को उपजाऊ बनाती हैं, कहीं ना कहीं जैविक कार्बन में लाभ देती हैं, तो सर कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को आप दलहनी फसलों के संबंध में, या अपनी तरफ से कोई बात बताने से रह गई है उस संबंध में देना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि हमें अपने

0: चाहिए खेत में, और वो उड़द भी हमें जो हमारी जरूरत है उसके अनुसार बो लेना चाहिए, कहीं
1: जी
0: हमें दो खाद उसके हमारी जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और हमारे खाने के प्रयोग भी आएगा ये।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: मैं अरहर की बात भी करूँगा, अरहर भी ऐसे ही है, अरहर भी बहुत अच्छे खेतों की हम टोल बंदी भी लगा सकते हैं, ऐसे खेत के अंदर भी बो सकते हैं हम,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसके भी हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वे जमीन को लाभ देगी। तो किसान भाई अपनी अगले फसल बोते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ पोषक तत्व छोड़ कर जाएगी वो,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि अगले फसल की पैदावार बढ़ेगी। आप और सभी किसान भाइयों को समय समय में अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करानी चाहिए।
2: बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को खरीफ में दलहन की उन्नत खेती के संबंध में दी, और आज आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी, खरीफ में दलहन की उन्नत खेती जानकारी दे रहे थे श्री हरिंदर कुमार सैनी। भाइयों देखो कितनी अच्छी जानकारी उन्होंने दलहन के संबंध में दी, कि भाई कुछ हमारे किसान भाई कितने भी जागरूक हैं, लेकिन भैया हमारी जो खेती किसानी है वो कहीं ना कहीं मौसम आधारित है, और भाई हम जो है कीड़े में और रोग में अंतर नहीं कर पाते हैं। भाई हम कीड़े को जो है रोग समझ लेते हैं और रोग को भैया कीड़ा समझ लेते हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। फसल आप चाहे दलहन की लगाएं या अन्य कोई फसल अपने खेतों में लगाएं, क्योंकि भाई कीड़ा जो होता है वो कीड़ा होता है, और बीमारी जो होती है वो फफूंद के कारण होती है। तो हमारे किसान भाइयों को हो सके तो भैया फसल बोते समय भैया बीज को उपचारित करके आवश्यक रूप से बोना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी तो हमारे किसान भाइयों को ये बरतनी चाहिए। दूसरे भाई, यदि फसल में कोई रोग या कीड़ा आ जाता है, तो भाई आप अपने खेत की निगरानी बना कर रखें, और साथ ही साथ भैया सुरक्षात्मक जो छिड़काव डॉक्टर साहब ने श्री हरिंदर कुमार सैनी जी ने बताया कि भाई आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि एक जैविक नियंत्रण भी है। तो भाई इस तरह से आप सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें और अच्छा लाभ दलहन की फसलों से आप कमाएं। तो भाई देखो हम तो यही बात कहेंगे कि आप दलहनी फसलों को अपने खेतों में उगाएं और समय समय से निगरानी करते रहें। और भाई अब देखो हमारे किसान भाई कह रहे होंगे कि भाई बातचीत ही करते रहेंगे या मनोरंजन की ओर भी चलेंगे, तो बिल्कुल भाई लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, और सुनते हैं ये देशभक्ति रागनी।

हम देश के वीर किसान भाइयों ने भी ये देशभक्ति रागनी सुनी अर्जुन सिंह बस साथियों से। भाई उम्मीद करते हैं आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान हमारे किसान भाइयों की उतर गई होगी। भाई देखो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? भाई आप हमें चिट्ठी पत्र लिखने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं और भाई घड़ी भी हमें शोर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन भाई आपको, क्योंकि आज हम कितने आधुनिक हो गए लेकिन भाई मौसम पर आधारित हमारी खेती किसानी आज भी है। तो भाई देखो, आप सभी के पास बड़े फ़ोन हैं, आप मौसम से अपडेटेड रहिए अपनी खेती किसानी में। चाहे भैया खरपतवारनाशियों का प्रयोग करना है या अन्य कोई स्प्रे आपको अपने फसलों में करना है, तो भाई मौसम को देख कर पहले और भैया उसके बाद ही आप अपनी खेती किसानी के काम करें और अपडेटेड समय समय पर बने रहें। भाई अब देखो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? क्योंकि आपकी भैया चिट्ठी पत्रों के आधार पर ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो भाई आप उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लें, 94-57-07-82-88। भाई इस पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और जो भी आपका सुझाव है वो आप हमें दे सकते हैं। और भाई नंबर एक बार और आपको नोट करा देता हूँ, 94-57-07-82-88। अब भैया कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज है विश्व रक्तदाता दिवस। आज इस विशेष दिवस पर इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ताकार शशि सैनी की विशेष वार्ता। वार्ता का विषय है रक्तदान महादान। आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है।
1: रक्तदान महादान है, यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। संसार में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं, किंतु रक्तदान ऐसा दान है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, महिला प्रसव, कैंसर तथा थैलेसीमिया के पीड़ित लोगों के लिए अमृत के समान सिद्ध होता है। आज विज्ञान ने अनेक चमत्कार किए हैं, किंतु अभी तक रक्त का कृत्रिम निर्माण संभव नहीं हो सका है। रक्त की पूर्ति केवल मनुष्य के द्वारा ही की जा सकती है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ नागरिक का दायित्व है कि वह समय समय पर रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान दे। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर दुनिया भर के अस्पताल, ब्लड बैंक, गैर सरकारी संगठन और सरकार एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होकर रक्तदान करने वाले रक्तदान वीरों का सम्मान कर अन्य लोगों को भी इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करते हैं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में हजारों व्यक्तियों की मौत उन्हें समय से रक्त न मिलने के कारण हो जाती है। विश्व की एक बड़ी आबादी सुरक्षित रक्त न मिलने की पहुंच से आज भी कोसों दूर है। पूरे विश्व में हर वर्ष 120 मिलियन यूनिट रक्तदान के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। भारतवर्ष में स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या कम है और आकस्मिकता पड़ने पर सुरक्षित रक्त मिल पाना एक बड़ी समस्या है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पूर्व महासचिव डॉक्टर आर.एन. मकूका का यह मानना है कि देश भर में प्रतिदिन 90 लाख से ज्यादा यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, परंतु हम काफी प्रयासों के बाद भी 60 से 70 लाख यूनिट ही रक्त इकट्ठा कर पाते हैं, जबकि एक यूनिट का मतलब है एक व्यक्ति का जीवन बचाना। हमारा देश भारतवर्ष हमेशा ही तप और त्याग की भूमि रहा है। यह वह भूमि है जहां महर्षि दधीचि ने इस पृथ्वी को राक्षसों के प्रकोप से बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। स्वैच्छिक रक्तदान के कार्यक्रम ने सन 1962 से 1971 के बीच गति तब पकड़ी थी जब पाकिस्तान व चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारत में स्वैच्छिक रक्तदान की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन देश में अभी भी हर साल लगभग 14.6 मिलियन यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ यानी 120 मिलियन यूनिट रक्तदान होता है, परंतु फिर भी अनेक देशों में सुरक्षित रक्त की कमी बनी रहती है। स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाता ही सुरक्षित रक्त आपूर्ति की रीढ़ माने जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 99% लोग रक्तदान करते हैं, त्रिपुरा में 96%, छत्तीसगढ़ में 95%, मध्य प्रदेश में 91%, हरियाणा में 88%, अरुणाचल प्रदेश में 90%, आंध्र प्रदेश में 88%, चंडीगढ़ में 82, महाराष्ट्र में 86, केरल में 87, पश्चिमी बंगाल में 85, हिमाचल प्रदेश में 85, मिजोरम में 79%, झारखंड में 77, पांडेचेरी में 75, उत्तराखंड राज्य में 72%, गोवा में 71, उड़ीसा में 65, दिल्ली में 66, पंजाब में 61, मणिपुर में 56%, आसाम में 56, मेघालय में 35 तथा बिहार राज्य में 30% लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां लोग रक्तदान न करते हों, लेकिन बिहार, मेघालय, असम राज्यों में स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ाने के लिए जन जागरूक शिविरों और नियमित रक्तदाता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है और एक रक्त यूनिट से कई रोगियों की सहायता मिल सकती है। 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से पूर्व व्यक्ति के रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन आदि की जाँचें भी निःशुल्क हो जाती हैं। रक्तदान करने से व्यक्ति के शरीर में कुछ ही सप्ताह में रक्त की कमी पूर्ण हो जाती है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोई भी व्यक्ति हर 3 माह के बाद पुनः रक्तदान कर सकता है। महिलाएं सामान्यतः 4 माह के बाद रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त 350 से 450 मिलीलीटर रक्त शरीर कुछ ही समय में पूर्ण कर लेता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के शोधकर्ताओं का मानना है कि 43 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में हर 6 माह में खून दान करने से व्यक्तियों में हार्ट अटैक होने की संभावना कम रहती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के शोध में पाया गया है कि नियमित रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस पर 14 जून को यह दिन उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और उनका आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करके अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं। रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक मानवता, करुणा और सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मनुष्य के जीवन में रक्त का महत्व उतना ही है जितना किसी वाहन के लिए ईंधन का। जिस प्रकार ईंधन के बिना वाहन नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार रक्त के बिना मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता। रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक रक्त निकल जाए और समय से उसे रक्त न मिले तो व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। विश्व रक्तदाता मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और उन्हें नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 14 जून 1868 को जन्मे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लेडिसनर का जन्म दिन होता है। उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी खोज ने ही आधुनिक रक्त प्रणाली की नींव रखी थी और लाखों लोगों के जीवन को बचाने में सहायता की। रक्तदान की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देता है। कई बार रक्तदाता और रक्त प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक दूसरे को जानते तक नहीं है, फिर भी रक्तदाता की उदारता किसी भी परिवार को खुशी लौटा देती है। यही सच्ची मानवता है। हमारे समाज में रक्तदान को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। इस संबंध में वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर MR मलिक का कहना है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इससे कोई भी कमजोरी नहीं आती है और कुछ ही समय में शरीर रक्त की कमी को पूरा कर लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर तक रक्त होता है और रक्तदान के दौरान मात्र 350 से 450 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है जो कि शरीर के कुल रक्त का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। रक्तदान केवल दूसरों के लिए ही लाभदायक नहीं है बल्कि स्वयं रक्तदाता के लिए भी इसके कई लाभ होते हैं। रक्तदान से व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाता है और इससे शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और आज भारत से दुनिया के कई देशों में रक्त की एक बड़ी चुनौती है। राज्य के चिकित्सालय, निजी चिकित्सालयों में, ब्लड बैंकों में हमेशा पर्याप्त रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता। आपात परिस्थितियों में रक्त की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे समय में नियमित और स्वैच्छिक रक्तदाता समाज के लिए वरदान साबित होते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें जीवित रहने के लिए बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त रक्त न मिलने के कारण उनका उपचार कठिन हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। विश्व रक्तदाता दिवस हम सभी को यह संदेश देता है कि रक्तदान किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तब केवल उसका रक्त समूह देखा जाता है, उसका धर्म या जाति नहीं। यही रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। हमारे देश में स्वस्थ युवा यदि वर्ष में 1 या 2 बार रक्तदान करने का संकल्प ले लें तो रक्त आपूर्ति की समस्या समाप्त हो सकती है। रक्तदान महादान है। आपके रक्त की एक बूंद किसी

0: व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। यदि आज कुल जनसंख्या का 1% भी रक्तदान करें तो सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त आसानी से उपलब्ध हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में न सोचकर दूसरों के दुखों के बारे में सोचता है वही जीवन का सदाचरण है और यही व्यक्ति निश्चित रूप से देश और समाज का सच्चा हितेशी नागरिक है। यदि इस तथ्य को रक्तदान से जोड़ा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज के समय में रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रक्तदाता दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि यह मानवता सेवा का सबसे बड़ा आंदोलन है। आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आपका थोड़ा सा रक्त किसी के पूरे जीवन की आशा बन सकता है। हम सभी के लिए ये लाइनें यहाँ उद्धृत करना जरूरी है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दें तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं एक पांव पर भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ताकार शशि सैनी की वार्ता। वार्ता का विषय था रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:56 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। आकाशवाणी नजीबाबाद के इस मधुर और लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोता, संगीत वो जादू है जो बिना कहे कुछ दिल की बात कह जाता है। कभी ये मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी यादों की हल्की सी दस्तक बनकर मन को छू जाता है। तो आइए आज के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही सदाबहार और दिलकश गीतों के साथ जो आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म आनंद से। आवाज है मुकेश की, गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और धुन तैयार की है सलील चौधरी ने।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म अमर प्रेम से। आवाज है किशोर कुमार की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओ, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जिसको हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाज है किशोर कुमार की, शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज के शेष और कल की दोनों सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर, और आज ही रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर सुनिएगा कुमकुम चट्टोपाध्याय से कुछ गीत। कार्यक्रम अदबी दुनिया में आज शाम 7:50 पर लुत्फ लीजिएगा शाहबाज आलम के चंद कलामों का। श्रोताओ, ये थी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सवेरे 9:15 पर सुनिएगा लखनऊ केंद्र से प्रसारित जिले की हलचल। कल रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले किया जाएगा। भूले बिसरे फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कल रात्रि 10:00। कल सवेरे 7:31 पर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में जानकारी के विषय रहेंगे विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सवेरे 9:25 पर सुनिएगा रजनी टोंक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत, और इसी क्रम में कल दिन में 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में आप सुन सकते हैं दयाशंकर फुलारा के कुछ कुमाऊनी लोकगीत। कल सवेरे 9:50 पर कार्यक्रम बात आसपास की, और कल दोपहर 12:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। कल दोपहर 12:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में निषाद खान के सितार वादन का। परिवार जगत, ये कार्यक्रम हमारी बहनें सुनेंगी कल दिन में 1:15 पर। कल शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में जानकारी का क्रम होगा भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं। क्रम होगा राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। कल शाम 6:45 पर विविधा में सुनिएगा वार्ताकार शौकीन अहमद की प्रदूषण नियंत्रण में आमजन की भूमिका विषय पर वार्ता। श्रोताओ, ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद आप लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब इमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
4: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
7: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह

0: 9:30 से 11:30 की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8:00 FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी।
3: ये
1: चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज के विशेष कार्यक्रमों के विषय में। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर, और आज ही रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:32 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमकुम चट्टोपाध्याय के स्वर में कुछ गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत कुमकुम चट्टोपाध्याय की आवाज में।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोता, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं इस समय सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं कुमकुम चट्टोपाध्याय के स्वर में गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत कुमकुम चट्टोपाध्याय की ही आवाज में।

0: ये बेदर्द ज़माना क्या जाने, ये बेदर्द ज़माना क्या समझे। इसी खूबसूरत गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आपने सुने कुमकुम चट्टोपाध्याय के गाए कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर, और आज ही रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, शाम के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अदबी दुनिया। आज के कलामी शायर हैं शाहबाज आलम।
1: एक मतला, एक शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं। मतला यूं कहा है कि

0: शर्त यह है कि साथ रहना तुम, शर्त यह है कि साथ रहना तुम, मैं न चमका तो यार कहना तुम। शर्त यह है कि साथ रहना तुम, मैं न चमका तो यार कहना तुम, हर जबां पर रहूंगा मैं शहबाज, हर जबां पर रहूंगा मैं शहबाज, और कुछ दिन में देख लेना तुम, और कुछ दिन में देख लेना तुम। आइए हाजरीन, एक मतला एक शेर में और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अदना ही सदा पिसता है आला नहीं पिसता, अदना ही सदा पिसता है आला नहीं पिसता, पिसता भी अगर है तो ज़्यादा नहीं पिसता, पिसता भी अगर है तो ज़्यादा नहीं पिसता, एक मैं ही नहीं उम्र के नरगे में खड़ा हूँ, एक मैं ही नहीं उम्र के नरगे में खड़ा हूँ, तुमसे भी तो अब सिल पे मसाला नहीं पिसता, तुमसे भी तो अब सिल पे मसाला नहीं पिसता। आइए हजरात, मैं एक गज़ल की शुरुआत करता हूँ। मतलब यूँ कहा है कि कहाँ रहने की हसरत है कोई फरियाद लिख देना, कहाँ रहने की हसरत है कोई फरियाद लिख देना, किसी से कुछ नहीं कहना नजीबाबाद लिख देना, किसी से कुछ नहीं कहना नजीबाबाद लिख देना, भला आशिक कहाँ जाए भरी गुर्बत के आलम में, भला आशिक कहाँ जाए भरी गुर्बत के आलम में, लबों से तुम लबों पर ही ज़रा इमदाद लिख देना, लबों से तुम लबों पर ही ज़रा इमदाद लिख देना, ज़रा भी तंग ना होना तुम मेरी यादों से है जाना, ज़रा भी तंग ना होना तुम मेरी यादों से है जाना, मैं दौड़ा आऊँगा खत में तुम्हारी याद लिख देना, मैं दौड़ा आऊँगा खत में तुम्हारी याद लिख देना, अगर चूड़ी पहननी हो मेरे हाथों से ही तुमको, अगर चूड़ी पहननी हो मेरे हाथों से ही तुमको, इशारे तन ही तुम लेकिन फिरोजाबाद लिख देना, इशारे तन ही तुम लेकिन फिरोजाबाद लिख देना, और कभी चाहत हो तुमको भी अगर टूंडे कबाबों की, कभी चाहत हो तुमको भी अगर टूंडे कबाबों की, कभी लखनऊ नहीं लिखना अमीनाबाद लिख देना, कभी लखनऊ नहीं लिखना अमीनाबाद लिख देना। और ये मक्ता पेश करता हूँ, वो लेकर आएगी कारट जब शादी का घर शहबाज, वो लेकर आएगी कारट जब शादी का घर शहबाज, लबों से कुछ नहीं कहना मुबारकबाद लिख देना, लबों से कुछ नहीं कहना मुबारकबाद लिख देना। आइए हजरात, एक गज़ल के चंद शेर और समात फरमा लीजिए। मतलब यूँ है कि लबों पे अपने तबस्सुम सजा के रखता है, लबों पे अपने तबस्सुम सजा के रखता है, और आस्तीन में खंजर छुपा के रखता है, और आस्तीन में खंजर छुपा के रखता है, मैं कैसे दोस्ती का उसकी एतबार करूँ, मैं कैसे दोस्ती का उसकी एतबार करूँ, वो दुश्मनों से भी मेरे बना के रखता है, वो दुश्मनों से भी मेरे बना के रखता है, हवा के जोर को पहचानता नहीं लेकिन दिए मुंडेरों पे छत की जला के रखता है, दिए मुंडेरों पे छत की जला के रखता है, दिखाई देती नहीं उसमें कोई तब्दीली, दिखाई देती नहीं उसमें कोई तब्दीली, मगर लिबास में खुशबू लगा कर रखता है, मगर लिबास में खुशबू लगा के रखता है, जलील जलील होता नहीं वो कभी भी दुनिया में, जलील होता नहीं वो कभी भी दुनिया में, जो अपने मसले आगे खुदा के रखता है, जो अपने मसले आगे खुदा के रखता है। और मक्ता यूँ हुआ था कि उसे पलों में समझना मुहाल है शहबाज, उसे पलों में समझना मुहाल है शहबाज, वो अपने आप को खुद में छुपा के रखता है, वो अपने आप को खुद में छुपा के रखता है। एक मतला चंद शेर और समात फरमा लीजिए कि भूल गया तो याद दिलाया जा सकता है, यार का ये तो नाज उठाया जा सकता है, भूल गया तो याद दिलाया जा सकता है, यार का ये तो नाज उठाया जा सकता है, और तू तो मेरा दोस्त है तेरी बात है क्या, तू तो मेरा दोस्त है तेरी बात है क्या, दुश्मन को औकात में लाया जा सकता है, दुश्मन को औकात में लाया जा सकता है, वैसे तो ये कीमती है पर जाने क्यों वक्त तुम्हारे साथ बिताया जा सकता है, लफ्जों से तस्वीर बनाई है उसकी, लफ्जों से तस्वीर बनाई है उसकी, महफिल में ये शेर सुनाया जा सकता है, महफिल में ये शेर सुनाया जा सकता है, तेरी जुदाई हक रखती है इतना तो, तेरी जुदाई हक रखती है इतना तो। कुछ दिन तक तो सोग मनाया जा सकता है, कुछ दिन तक तो सोग मनाया जा सकता है। मेरे नबी की सीरत पढ़ के देखो तुम, दुश्मन से भी प्यार जताया जा सकता है, दुश्मन से भी प्यार जताया जा सकता है। और जुल्मो सितम ना ढाओ मुझ पर वरना तो, जुल्मो सितम ना ढाओ मुझ पर वरना तो, दौर पुराना फिर दोहराया जा सकता है, दौर पुराना फिर दोहराया जा सकता है। और मकता हुआ था कि अब हम पर शहबाज पड़ा है वक्त बुरा, अब हम पर शहबाज पड़ा है वक्त बुरा। अब यारों से धोखा खाया जा सकता है, अब यारों से धोखा खाया जा सकता है। एक मतला चनशेर और आपकी खिदमत में रखता हूँ। मैं तुम्हारे इश्क में नाकाम हो जाने के बाद, मैं तुम्हारे इश्क में नाकाम हो जाने के बाद, खुद में रहता ही नहीं हूँ शाम हो जाने के बाद। और दोस्त भी अपने नहीं और दूर सब अहबाब है, दोस्त भी अपने नहीं और दूर सब अहबाब है। ये चला हमको पता नीलाम हो जाने के बाद, ये चला हमको पता नीलाम हो जाने के बाद। और अपने शेरों पे मुझे इतना यकीन है दोस्तों, अपने शेरों पे मुझे इतना यकीन है दोस्तों। और जाना जाऊंगा गुमनाम हो जाने के बाद, फिर वही उसका तसव्वुर फिर वही उसका ख्याल। और करना भी है क्या आराम हो जाने के बाद, और करना भी है क्या आराम हो जाने के बाद। बेवजह बदनाम है मजदूर तो बस दोस्तों, बेवजह बदनाम है मजदूर तो बस दोस्तों। भागता यारों को देखा काम हो जाने के बाद, वो भी हमको जानता है जिसने देखा भी नहीं। शोहरतें इतनी मिली बदनाम हो जाने के बाद, शोहरतें इतनी मिली बदनाम हो जाने के बाद। और मकता यूं हुआ था कि शहर में शहबाज अब फुटपाथ पे सोते हैं लोग, गांव में मिट्टी का घर नीलाम हो जाने के बाद, गांव में मिट्टी का घर नीलाम हो जाने के बाद। मतलब यूं कहा है कि दिन अजियत के इतने बढ़ने लगे, हाथ झटका तो सांप झड़ने लगे, और बज़्म की रौनकें बढ़ाने को लोग अख्तर के शेर पढ़ने लगे, लोग अख्तर के शेर पढ़ने लगे। चारा साजों को अब मिली फुर्सत, चारा साजों को अब मिली फुर्सत, जब हमारे ये जख्म सड़ने लगे, जब हमारे ये जख्म सड़ने लगे। जिसने भी रब के हुक्म को माना, जिसने भी रब के हुक्म को माना, वो तरक्की की सम्त बढ़ने लगे, वो तरक्की की सम्त बढ़ने लगे। और वो चढ़ाओ था उस बदन पे के उफ, वो चढ़ाओ था के उस बदन पे के उफ, जिस पे चढ़ते ही सांस चढ़ने लगे, जिस पे चढ़ते ही सांस चढ़ने लगे। और मकता यूं हुआ था कि जिनकी औकात कुछ ना थी शहबाज, जिनकी औकात कुछ ना थी शहबाज, वक्त बदला तो वो भी अड़ने लगे, वक्त बदला तो वो भी अड़ने लगे।
1: शाहबाज आलम के इन्हीं कलाम के साथ कार्यक्रम अदबी दुनिया अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है हमारे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओ, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत संध्या में। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हर शाम सजती है सुरों की महफिल और दिल को छू जाते हैं कुछ खूबसूरत से नगमे। इस खूबसूरत से गीतों को हम एक पिरो कर लाए हैं एक बहुत ही हसीन गुलदस्ते में, जिसकी हर फूल की खुशबू आपके दिल को सुकून देगी। श्रोता, संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे ही हमारे एहसासों को बयां कर देता है, कभी खुशी कभी गम तो कभी प्यार की मीठी यादें। और जब बात हो हमारे प्यारे हिंदी फिल्मी गीतों की तो कुछ धुन एक कहानी बन जाती है। तो तैयार हो जाइए सुरीली यात्रा के लिए, जहां हर गीत आपको ले जाएगा यादों की हसीन गलियों में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की गीत संध्या की एक ऐसे ही मधुर गीत के साथ जो आपके दिल को छू जाएगा। तो सुनिए फिल्म धर्मात्मा का ये गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और कंचन की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओ, आंखें कभी लफ्जों की मोहताज नहीं होती, ये तो खामोशी में भी दिल की दास्तान कह जाती हैं। कभी इसमें सपने बसते हैं तो कभी यादों के दीप जल उठते हैं। तो ऐसे ही कुछ बयां करता है हमारे कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म वीर से। आवाज़ है राहत फ़तेह अली ख़ान और सुज़ैन डिमेलो की। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

श्रोता, मोहब्बत की राहें हमेशा आसान नहीं होती। कभी प्यार खुशी बनकर जीवन को महका देता है, तो कभी जुदाई और अधूरेपन का एहसास दिल को बेचैन कर देता है। ऐसे ही दर्द, तड़प और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयान करता है हमारे आने वाला ये गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म साजन से। आवाज़ है कुमार सानू और अनुराधा पटवाल की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोता, मोहब्बत जब दिल में घर कर जाती है तो रातों की नींद और दिल का सुकून दोनों ही कहीं खो जाते हैं। हर आहट में किसी का इंतजार होता है और हर धड़कन में उसी का नाम बस जाता है। प्यार का यही मीठा सा एहसास कभी बेचैनी बन जाता है तो कभी किसी के ख्यालों में खो जाने का खूबसूरत बहाना। इन्हीं जज्बातों को सुरों में पिरोता है ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सनम से। गीत में आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओ, हर खूबसूरत महफिल की तरह आज की हमारी गीतों भरी मुलाकात भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है आज के ये गीत आपको पसंद आए होंगे, आपके दिल में मधुर यादों की महक भी छोड़ गए होंगे। तो विदा लेने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे, सुरों की ये महफिल यूं ही सजती रहे, आपकी मुस्कान यूं ही खिलती रहे, गीतों के बहाने मुलाकात होती रहे और दिलों में मोहब्बत की रोशनी जलती रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए अनुमति और अब सुनिए आज का अंतिम गीत जो प्यार के एहसास को दिल की गहराइयों तक पहुंचा देता है, फिल्म रंग से। आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत है समीर का और संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एकल फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं 70 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय फिल्म लोफर के सदाबहार गीत। संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर सीधे दिल में बस जाते हैं। फिल्म लोफर के गीत भी उन्हीं में से हैं। तो आइए इन मधुर गीतों की दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं फिल्म लोफर का ये पहला गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओ, साल 1973 में प्रदर्शित फिल्म लोफर का निर्देशन ए भीम सिंह ने किया था। फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज, ओम प्रकाश और प्रेमनाथ ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म लोफर का ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

फिल्म से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: श्रोताओ, फिल्म लोफर के इन मधुर और सदाबहार गीतों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: Trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिपेक्ष है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक

0: अमित दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palade Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
5: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है. इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
4: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
5: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है.
4: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
6: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
4: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
6: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon that was led in a record time by ISRO with cost, with record cost, is demonstrations in terms of strength, innovation, but also in terms of implementation at the industrial level and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
4: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
7: The world seeks trusted and reliable partners. And that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
4: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers, and investors participating in the event. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. We have more from our correspondent.
8: A ceremonial welcome will be accorded to the Prime Minister on Monday morning. Sri Narendra Modi will meet President Pellegrini and Prime Minister Fico during the visit. The Indian diaspora in Slovak Republic is highly excited about the maiden visit of an Indian Prime Minister to the country. Smidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
4: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Our correspondent has filed this report.
9: Programs such as Swachh Bharat, Digital India, Digital Health, Deep Ocean Mission and Gaganyaan have helped position science and innovation at center of India's development journey. Missions such as Chandrayaan 3 have transformed space science into a subject of widespread public interest, creating unprecedented

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तौसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों

0: आया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसीतर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शोर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवण पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचमपरदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेफ एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: दिस इज डेली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर द नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। दिस इज आकाशवाणी, टाइम फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स। टुडे इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इट इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली on June the 14th every year and is one of the 11 official global public health campaigns recognized by the World Health Organization to raise awareness about the constant need for safe blood and to thank voluntary unpaid blood donors. It is in this backdrop that we now bring you a feature titled The Thread Between Us.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पेरवली जय भास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाई श्री जे श्री राम in the broadcast of Ravivasaraya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasaraya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovate, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSPI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and